को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बुलबले बलो जी वाहिगुरु बलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रैत दान बबेक दान विश्वास दान भरूसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल

लागे गुरु हे अकाल पुरुष अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो श्री ननकाणा साहिब आते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार आते सेवा संभाल दा दान खालसा जिन बख्शो हे निमानियां दे मान नेतानियां दे तान नेतियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास ओलो चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत आते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दारों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजिर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत

और पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस भगत समादं मुख चूर विमुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दे धोती वस्त्र पाटं जे जान सुभम करमं सब फोकट निश्चौ करमं कहो नानक नह चौ त्यावै बिन

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी।

0: नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISET संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम

वेव्स ऐप राही ते न्यूज ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज की घड़ी मुताबक 6:05 हो रहे ने। हुन सुनो आज का ज्ञान अमृत।

जीवन प्रेम है ते जद मनुख दूसरां दी भलाई करना छड़ दिंदा है तां उसदी समाजिक अते अध्यात्मिक मौत हो जांदी है।

निरंकार का नाम जिन्ना भी जपिए उन्ना ही मन नूं सकून मिलता है। इस दी भक्ति विच जो आनंद है वो शब्दों विच बयान नहीं किया जा सकता। आओ इसे प्यार ते श्रद्धा नाल

0: रुड़िया राम जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। संधु साहब बचालो, की हाल चाल है तेरा?
0: हाल चाल बहुत वधिया जी, अपना सुनाओ।
1: तकड़ा तकड़ा शुक्र। देखो जिदा आप कहने ना कि ब्रिकी अगे खेती कहते थे अड़ला सेठ, हूँ खेती जिहड़ा काम है ब्रिकी का है, ये है भी असी फसलां जमीन भी साढ़े कोले उही है ते फसली चक्कर भी साढ़े कोले उही है। हुण इसे चीज़ चो व्योंत आपां ने इस लिहाज नाल कढ़नी है कि मुनाफा आपां किदां

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते

संसार में जो कुछ उनके योग्य था विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकई को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

आओ हुन तुहानू जानकारी दे दिए आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम आदि सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर 8:40 ते पंजाबी फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम महक पंजाब ते पेश किया जाएगा सवेरे 9:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम एक कलाकार इस विच आज गल की जाएगी फिल्म प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर जीपी सिप्पी दे फिल्म ते गीता बारे 9:30 गजलां पेश कीतियां जाणगियां 10:02 ते तुसी साडा फोन इन बेस्ड प्रोग्राम सुनोगे हैलो

फरमाइश। 11:05 व्हाट्सएप मैसेज बेस प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी पेश कीता जावेगा। दोपहर 12:05 ते समा रहेगा प्रोग्राम वसदे वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी रेडियो डॉक्टर च अधरंग ते लक्षण ते फिजियोथेरेपी राही इलाज विषय ते दित्ती जानकारी सुनोगे ते इस उते जानकारी देंगे डॉक्टर मनीषा उल्टन सोई ते कथा लोक ते नवा ताजमहल बारे दित्ती जानकारी सुनोगे। फौजी वीरानी प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 प्रोग्राम रंगली धरती विच। आज तुसी मिठा सिंह बडावली दे लोक गीत सुनोगे। साड़ी दूजी सभा च 4:02 ते तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्म संगीत। 4:03 ते तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सर्वन करोगे। शाम 5:30 सर्वन करोगे गुरुवाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होवेगा 6:03 ते। इस अज नवे बाग दी संभाल विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी ते जानकारी देंगे डॉक्टर TS चाहल। 7:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम किसान वाणी। इस विच अज किसान समाचार मौसम दा हाल मंडिया दे भाव बारे जानकारी दित्ती जावेगी। 8:00 तुसी साडा इवनिंग शो सुनोगे जिंदगी हसीन है। 9:00 तुसी सुनोगे न्यूज 8:09। 9:15 पेश कीता जावेगा स्पॉटलाइट। ए दोनों प्रोग्राम साडे दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे। उस तो बाद 10:02 ते तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च आज तुसी कलाकार पंडित विश्व मोहन पट तो गिटार वादन सुनोगे राग हेमत सुनोगे। 10:30 प्रोग्राम सरगम पेश कीता जावेगा। सुहासन अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा हुण तो बस कुछ ही पलां च तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मंत्रिमंडलेन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना राज्येषु 17 जनपदेषु विस्तृताः पंच रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अनुमोदिताः। एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेल जाले प्रायः 40.5 किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां पंच परियोजनानां अनुमानित व्ययः आहत्य 21.10 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। श्री वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17.10 कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्याः तिस्रः अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यानां 14 जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं 11 नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य 22-27 दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इंडिया इत्येतत् 64 कौशलेभ्यः 63 कौशलेषु प्रायः 70 प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा विविधता पूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्री गोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुं आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मंत्रालयस्य अन्तर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मंत्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.65 कोटि रूप्यकाणां अनुमानित वित्त व्ययेन केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उड़ीसायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्त वर्ण परा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियोज दी कड़ी मुताबक सवेर दे 7 बज रहे ने। हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल दी 10,700 करोड़ रुपए तो वध दी कुल लागत वाले 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है इन्होंने फैसलों नाल मुसाफरों की आवाजाई ते संपर्क बेहतर होंगे। भारत ते श्रीलंका ने दोवे देशों की भलाई लई काम करन वास्ते अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है। माली खुफिया इकाई के डायरेक्टर ने 15 वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां सेवा प्रोवाइडर्स नू मनी लॉन्ड्रिंग डिजिटल रोकथाम कानून 2002 की पालना ना करन करके नोटिस जारी किया है। पंजाब के व्यापार ते सनअत मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई च इन्वेस्ट पंजाब समागम नू संबोधन किया। मंत्री ने

सोनी स्वीट प्रोग्राम है जी, शीतल है तुहाडे नाल, तो गीत तो बाद मैं वापस आ चुकी हाँ। जिंदगी हमेशा सानू ये सिखाउंदी है कि कुछ भी कदे खत्म नहीं होया, पर इंसान हमेशा ये सोचता है कि लो जी इत्थे हुण सब कुछ मुक गया, ये हुण जिंदगी दा इहो जिहा मोड़ है जिथे मैनू हुण कुछ अगे नज़र नहीं आ रहा, पर जदों ऐ लगे ना कि हुण सफ़र खत्म है, उत्थों ही समझ लो कि एक नवी शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि एक बहुत वड्डी मिसाल है जी मेरे कोल। अमेरिका दे विच एक इतिहासक एहो जिही ही गल हुई है फिलाडेल्फिया शहर दे विच। 1985 तो लैके 2016 तक दुनिया दे वड्डे साइकलिस्ट इस शहर दे विच एक साइकलिंग क्लासिक फिलाडेल्फिया दे विच हिस्सा लेंदे सन। एक बहुत वड्डी रेस सी, पर इन्ने सालां दी रेस तो बाद एक समा आया कि बजट दी कमी हो गई ते ए रेस बंद हो गई। पूरे 10 साल तक फिलाडेल्फिया दीआं सड़कां खामोश रहीआं और लगदा सी कि शायद ए रेस हुण कदे वी वापस नहीं आएगी, पर इस नूं वापस लिआउण वाला कोई अरबपति या फिर कोई वड्डा स्पोर्ट्स प्रमोटर नहीं सी। दोस्तों एक काम कीता फिलाडेल्फिया दे एक छोटे जिहे हेयर सलून नूं चलाउण वाले रॉजर्स ने। रॉजर्स ने 4 साल तक इस रेस नूं वापस लिआउण दे लई पूरी कोशिश कीती। कईआं दे उसने दरवाजे खड़काए, शहर दे पुराने मेयर्स नूं जाके मिलिया, लोकां नूं उसने अपने नाल जोड़िया, ते फिर उसने बंद हो चुके अपने इस सुपने नूं मुड़ जिंदा कर दिखाया ते आखर रेस वापस आ गई। रॉजर दे लई इह सिर्फ एक रेस दी वापसी नहीं सी, इह किसे मैडल तो घट नहीं सी, क्योंकि कई वार ना जिंदगी तुहानू रोकदी नहीं है, सिर्फ नवी शुरुआत दे लई तैयार करदी है। सो तुहानू की लगदा है कि तुहाडे कोल रुक गया है, तुसी भी उसनू शुरू करन दी दोबारा कोशिश कर सकदे हो, ते अज तो ही अपनी एक डायरी चक्को, एक पेन चक्को ते नोट डाउन करो कि तुसी अपनी लाइफ दे विच किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां नू बंद कर चुके हो, जां तुहानू लगदा है कि दरवाजे बंद हो चुके ने, क्योंकि दरवाजे कदी बंद नहीं हुंदे, कोई ना कोई सुराख जरूर हुंदा है। कोशिश हुंदी है सिर्फ देखण दी, कोशिश हुंदी है लब्भण दी, कोशिश हुंदी है उस उत्ते कुछ ना कुछ काम करण दी। सो अगला गीत आ रहा है, गीत तो बाद मैं फिर वापस आनी है।

मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। जिंदगी नूं असी इस तरीके दे नाल सस्ते दे विच नहीं छड़ सकते, ते जिंदगी कटनी ते जिंदगी दे विच लचीलापन लैके आना भी बड़ी वड्डी चुनौती हुंदी है। सो जेकर तुसी अपनी जिंदगी दे विच सिकंदर बनना चाहुंदे हो ना, तां बहुत जरूरी है कि जिंदगी दे तत्थां नूं पहचानो। जिंदगी कदे भी इक्को जिही नहीं हुंदी, जिवें इक्को जिहा एक रंग सानू चंगा नहीं लगता, इको जिहा सानू समा चंगा नहीं लगता, उसे तरह जिंदगी भी इको जी सानू कदे चंगी नहीं लगेगी। जिंदगी च हमेशा उतार चढ़ाव हुंदे ने, सो इस उतार चढ़ाव दे विच ही असी जिंदगी दे राह लभणे ने। ये सोच लेना कि मैं बहुत दुखी हाँ, मैं बहुत परेशान हाँ, या मेरे कम नहीं बनते तो मैं इस जिंदगी नू खत्म करना, ये कोई जित की निशानी नहीं होंगी। सो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इसकी शुरुआत 2003 दे विच कीती गई सी, ते इसकी शुरुआत दे विच इंटरनेशनल एसोसीएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ते WHO ने सांझे तौर पर इस दिन नू शुरू किया सी, ताकि लोगों नू समझाया जा सके कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं होंगी। सो जिंदगी नू इस तरीके नाल खत्म कर देना ही हल नहीं होंदा, जिंदगी नू जीना उस चुनौतियों के विचों गुजरना ही जिंदगी होंदी है। सो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इसे नू याद करन दे लई मनाया जांदा है कि ये समझिया जावे कि जिंदगी नू जीना किहड़े ढंग दे नाल है। बहुत जरूरी है कि असी गलबात करिए अपने दोस्तां मित्रां दे नाल, अपनियां गल्लां नू शेयर करिए, सांझा करिए, एक दूजे दा सहारा बनीए, एक दूजे दी मदद करिए, ते नाल ही नाल असी अपने शौक नू तलाशिए, हॉबी नू कदे भी ना भुलीए। कि बचपन दे विच भी असी माई हॉबी दा ऐसे पढ़ना शुरू कर दिंदे आ, ये छोटिया छोटिया चीज़ा सानू याद लाउंदियां ने कि जिंदगी नू असी किवें जीना है। सो अपनी हॉबी नू तलाशो, अपने शौक नू तलाशो, ते फिर देखो जिंदगी किन्नी खूबसूरत है।

0: साथ आने की उनको रिक्वेस्ट की है, और खुशी की बात है कि सारे लोग खुशी खुशी आए, पंचायत के सरपंच से लेकर और हमें आर्मी और दफ्तर सरकारी दफ्तर के सीनियर ऑफिसर तक सारे लोग साथ में आए और साथ में मिलकर हम लोग इस काम को सफल कर पाए।
1: कहते लोगों ने खुशी खुशी अपनी जमीन दतिया, की ये सच है?
0: शुरू में तो खुशी खुशी नहीं दे रहे थे उनको, चूंकि उनकी खेती की जमीन थी और काफी महंगी यहाँ पे जमीन है, और हम लोग ये भी उनको एक दिखाना चाहे कि आप जो पिछले 50 सालों में आपने जो देखा है और उसके बदलते हुए मौसम को, कि आप अपने बच्चों को आने वाले 50 सालों में वैसा देना चाह रहे हैं, इस बातों से लोग काफी प्रभावित हुए और फिर साथ में आना शुरू की। अभी तो सारे लोग खुशी खुशी आते हैं साथ में और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं अभी।
1: जी सर, ये दसो के बूटे लगाने की मुहिम तो बहुत जानिया बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे संस्थावां करते हैं, पर उन्होंने मेंटेन करना बहुत औखा होता है, ये मेंटेनेंस कैसे हुई?
0: जी बिल्कुल आपकी बात सही है, बूटे लगाने वन ऑफ द इजिएस्ट टास्क है, सबसे आसान काम है बूटे लगाने, लेकिन उतना ही मुश्किल काम है उसको बचाना। तो हमारी इसमें एक गवर्नमेंट के महकमे से और हमारी जहाँ भी जंगल लगी है अभी तक उस सबको हम लोग पिछले कई सालों से उसको मेंटेन करते हुए आ रहे हैं और उसको सर्वाइवल हम लोग काउंट करते हैं। इसकी हमारी एक मॉनिटरिंग ऑडिट की रिपोर्टिंग होती है, वो सारे चीज हम लोग कवर करते हैं इसको।
1: ये दसो के जड़े बूटे लगाए गए, वक् वक् किस्म के बूटे लगाए गए ने, इन्हों का भी ध्यान रखा गया है कि केड़ी मिट्टी दे विच केहो जे बूटे लगाने चाहिए ने?
0: हाँ जी बिल्कुल इस बातों का ध्यान रखा गया है, और जो पंजाब की देसी रवायती रुखे हैं उस पे हम लोग काम ज्यादा कर रहे हैं और उसी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि जामुन आम।
1: बिल्कुल सर, जो भी असी जदों भी कुछ करदे आ ते ओदे आउण वाले समय दे विच होर बेहतरी दी गुंजाइश आपां रख के चलदे आ, तुहानू होर की लगदा आउटकम्स की होने चाहिदे ने आउण वाले वक्त विच?
0: आने वाले वक्त में हम पंजाब के हर एक जनता से हर एक लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए, राउंड ग्लास की इस मुहिम में जुड़े, और बूटे लगाने किसी एक संस्था किसी एक महकमे की जिम्मेवारी तो है, पर इसके साथ साथ हमारे पूरे आम जनता की भी जिम्मेवारी है कि बूटे को लगाएं और देख रेख करें। और मैं आशा करता हूं कि अगर बूटे कोई भी लगाए गए हैं मेरे द्वारा चाहे अलग अलग कई संस्थाएं लगा रही है, कोई आम जनता उसमें एक लीटर पानी भी डाल देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगी होगी उसको जिंदा रखने में, मदद करने में। तो हम सारे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि वो लोग साथ में आए जुड़े।
1: जी अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय

0: समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $30 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अभिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिले में और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना।

0: करना है। केरला में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दांव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an all-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees.

0: कटनी पेंडरा रोड चौथी लाइन अते बिलासपुर पेंडरा रोड तीजी लाइन शामिल ने। इन्हां नूं 2029 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ते तेलंगाना दे 17 जिलों नु कवर करन वाले पांच प्रोजेक्ट भी मंजूर किए ने। इस नाल नेटवर्क दा करीब 540 किलोमीटर तक पसार होएगा। श्री वैष्णो ने यह भी दस्या कि सरकार ने करीब 11,000 किलोमीटर लंबे सारे 7 उच्च आवाजाई वाले रेलवे कोरिडोरां नु चौगुणा करन दा फैसला किया है। इन्हां विच दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई ते मुंबई चेन्नई शामिल ने। 2,000 किलोमीटर तहत आने वाला चौगुनी लाइन निर्माण पहला ही पूरा हो चुका है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2,000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के संबंध में श्री वैष्णव ने कहा कि सेवा अगले साल शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों बारे कैबिनेट के फैसले नाल यात्री आवाजाही तेज होगी, संपर्क में सुधार होगा ते माल ढो ढुवाई की समर्था में वाधा होगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ते पश्चिम बंगाल विच रेलवे नेटवर्क का प्रसार करेंगे ते संपर्क विच सुधार करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट विरसे ते जंगली जीव सैर सपाटे नूं महत्वपूर्ण हुलारा देंगे, नाल ही लॉजिस्टिक लागतां नूं भी घटाउण च मदद करेंगे। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशां नूं अंतरराष्ट्रीय व्यापार विच औरत उद्यमियां ते औरतां दी अगवाई वाले कारोबारां नूं उत्साहित करन लई रल के काम करन दा सद्दा दित्ता है। कल नवी दिल्ली विच ब्रिक्स WPA औरतां दी अगवाई वाले विकास सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं श्री गोयल ने औरतां लई कर्जे ते बाजारां तक आसान पहुंच दे नाल नाल स्पष्ट अते स्थिर व्यापारक नियमां दी जरूरत ते जोर दित्ता। उन्हां कहा कि भारत माली समावेश, सिक्ख्या, हुनर विकास ते बेहतर जीवन पद्धर राहीं औरतां नूं मजबूत बनाउण ते ध्यान केंद्रित कर रहे तां जो देश दे आर्थिक विकास विच वड्डी भूमिका निभा सकण। श्री गोयल ने कहा कि भारत विच करीब 30 करोड़ औरतां दे बैंक खाते ने। अपना कारोबार शुरू करन वालियां औरतां नूं बिना किसी जमानत दे कर्जे भी दिते जा रहे ने।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: श्री गोयल ने सरकारां नूं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलियां, कॉन्फ्रेंसां, सेमिनारां, नुमाइशां ते व्यापारक फोरमां विच औरतां दी मलकियत वाले उद्यमां दी वध तों वध हिस्सेदारी नूं उत्साहित करन दी भी अपील कीती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो विच श्रीलंका दे प्रधानमंत्री डॉ हरेनी अमरा सूर्य नाल मुलाकात की थी। दोवां नेतावां ने कई मुद्दयां ते चर्चा की थी, जिन्हां विच मीटिंग दा मुख केंद्र विकास दे खेत्र विच सहयोग सी। उन्हां ने सिक्ख्या, सूचना तकनालोजी, बुनियादी ढांचा, नवीनता अते खोज समेत आपसी हितां दे खेत्रां विच प्रगति दी समीक्षा की थी। उन्हां ने भारत ते श्रीलंका विचकार पुरातन सभ्यता संबंधां ते वी चर्चा की थी अते दोवां देशां विचकार एक स्थाई संबंध वजों मजबूत लोकां तों लोकां दे वटांदरे नूं उजागर कीता। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR@RNJalandhar। सरकार देश के किसानों नूं नकली अते घटिया बीजां तों होण वाले नुकसान तों बचाउण लई एक नवां ते सख्त बीज कानून लियाउण दी तैयारी कर रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संबंध विच अज नवी दिल्ली विच देश भर दे प्रमुख किसान संगठनां दे सीनियर आगुआं नाल इक उच्च पदरी सलाह मशवरा करनगे। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय ने कहा कि तजवीजशुदा कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे खुशहाल अते आत्मनिर्भर किसान भाईचारे दे दृष्टिकोण नूं साकार करन लई सरकार दे यत्नां दा हिस्सा है। इसने कहा कि सलाह मशवरे दा उद्देश किसानां दे जमीनी पद्धर ते तजर्बियां, सुझावां अते चिंतावां नूं सिद्धे बीज कानून दे खरड़े विच शामिल करना है। मंत्रालय ने भी कहा कि तजवीजशुदा नवे बीज कानून विच नकली, मिलावटी या घटिया बीजां दी विक्री विच शामिल कंपनियां ते व्यापारियां विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई दा प्रबंध करन दी भी उम्मीद है, जिस विच भारी जुर्माने ते कैद शामिल है। सरकार बीज

प्रोग्राम महक पंजाब दी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च अगला गीत तुहानू सुना रहे हैं। फिल्म असानू मान वतना दा। इस फिल्म चो हरभजन मान, जसपिंदर नरूला दी आवाज़ च एक गीत। लो जी सुनो।

प्रोग्राम महक पंजाब दी तुसी सुन रहे हो ते हुनी तुसी सुनिया फिल्म असानू मान वतना दा हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दे आवाज़ च एक गीत ते अगला गीत हुन थानू प्रोग्राम च सुनान जा रहे हैं फिल्म कैरी ऑन जट्टा च गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ च एक गीत इंजॉय करो।

प्रोग्राम महक पंजाब दी तुसी सुन रहे हो ते इस प्रोग्राम दा आखरी गीत फिल्म लावा फेरे चूं हैप्पी राय कोटी दी आवाज़ च लो जी इंजॉय करो ये गीत।

प्रोग्राम एक कलाकार इस आज जीपी सिंह जीपी सिप्पी जो कि फिल्म प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर सन आज उना दे फिल्मा उना दे गीता बारे असी गल करांगे। फिल्मी दुनिया विच कुछ जिहड़ियां शख्सियतां ने ओह अजिहियां हुंदियां ने जो सिर्फ फिल्मा नहीं बनाउंदियां सगों अपने काम नाल एक यादगार दौर सिरज जांदियां ने। अज दे साडे प्रोग्राम एक कलाकार विच असी गल करांगे एक अजिहे मशहूर फिल्मकार दी जिन्हां ने निर्माता ते निर्देशक वजों हिंदी सिनेमा नूं कई यादगार फिल्मां अते बेहद खूबसूरत गीत दित्ते। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं जी पी सिप्पी जी दी। उन्हां दे फिल्मी सफर दी, उन्हां दी फिल्मां दी अते उन्हां फिल्मां दी अज असी गल करांगे जिहड़ियां अज भी लोग दिलों पसंद करते ने। उन्हां दे फिल्मी सफर 50वीं दहाके तों शुरू होया। उन्हां ने सजा, शहनशाह, मरीन ड्राइव, श्रीमती 420, चंद्रकांता, 12 o'clock वर्गिया फिल्मा बनाईया। इस तो बाद उना दिया फिल्मा ने बॉक्स ऑफिस दे नाल नाल लोकां दे दिलां विच भी अपनी खास थां बनाई। मेरे सनम, बंधन, अंदाज, सीता और गीता ये बहुत सारिया फिल्मा जिहड़ियां ने ओह अज भी लोग पसंद करते ने। ते जेकर असी गल करिए शोले फिल्म दी, तो जदों इस फिल्म का नाम आता है इसके किरदार, इसके डायलॉग और इसके गीत याद आ जाते हैं। तो प्रोग्राम एक कलाकार च आओ फिर शोले फिल्म का एक गीत सुनते हैं किशोर कुमार ते मना डे की आवाज़।

किशोर कुमार दी मिठी आवाज अते आरडी वर्मन दे संगीत नाल सजिया एक गीत अज भी उसे तरह ताजगी भरिया महसूस हो रहा है। एंड मैं उम्मीद करती हाँ कि तुहानू सारियां नू भी यह गीत जड़ा है अज भी उही ताजगी दिता होगा। हुण गल करते हैं जी सन 1972 की फिल्म सीता और गीता दी। इस फिल्म विच हेमा मालिनी दे जिहड़ी दोहरी भूमिका सी उन्होंने निभाई सी ते फिल्म का जड़ा निर्माण सी ओ जीपी सीपी जी ने किया सी। इस फिल्म के गीत भी जड़े से ना वो लोगों को बहुत पसंद आए। इन्हां विच एक बहुत ही खूबसूरत गीत सी जिहड़ा कि हुण असीं तुहानू सुनाउण जा रहे हैं। तो इस गीत नूं किशोर कुमार अते आशा भोसले ने अपनी आवाज़ दिती जबकि जिहड़ा संगीत सी ओ आर डी बर्मन जी दा सी। तो फिर आओ सुनते हैं फिल्म सीता और गीता दा ए प्यारा जिहा गीत नूं जी करो तुसीं इंजॉय।

प्रोग्राम एक कलाकार च अजकल कर रहे हैं जी पी सिप्पी जी की फिल्म उन्हों का फिल्मी सफर बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चला रहा तो हूँ वारी है एक होर यादगार फिल्म की जिसका नाम है जी शान शान फिल्म साल 1980 विच आई शान फिल्म के निर्माता जी पी सिप्पी जी सन और निर्देशन रमेश सिप्पी जी का सी इस फिल्म का जो संगीत से वह आर डी बर्मन ने दिता सी तो जेकर असी गल करिए इस फिल्म के गीतों की उसने भी अपने समय में खूब धूम मचाई सी तो इन्हों एक गीत जोड़ा है ना वो अज असी थानू सुनावे जिसनों सुनद्या ही माहौल जोड़ा है ना वो रंगीन हो जाता है तो हर कोई जो है वो इस गीत पर जोड़ा ना वो झूम उठता है तो फिर आओ सुनते हैं किशोर कुमार आशा उषा तो मुहम्मद रफ़ी की आवाज़ एक गीत

ही रहती है। तो अज प्रोग्राम एक कलाकार असी गल जी पी सी पी जी के फिल्मी सफ़र बारे की, कई दहाक्या तक फैलिया होया सी उन्हों का जोड़ा फिल्मी सफ़र से। उन्होंने वक् वक् दौर दिल्मों राही दर्शकों कहानियां दतिया अजिहे गीत भी दते जो अज तक साढ़े दिलों में वसे हुए हैं। फिर चाहे वह शोले फिल्म होवे, दूसरी फिल्म होवे, सागर होवे और कई सारिया फिल्म हो, चाहे वह सीता और गीता जिसते असी अज गीत भी सुने, उसकी मस्ती होवे, शान फिल्म का जोश होवे या फिर राजू बन गया जेंटलमैन की नौजवानी। जी पी सी पी जी का जोड़ा सिनेमा कई रंगा नाल भरिया होया सी, इसलिए अज भी जदों इन्हां फिल्मों के गीत वजदे ने ना तो सिर्फ गीत नहीं वजदे, नाल ही एक पूरा दौर, एक पूरी याद अते बहुत सारिया खूबसूरत कहानियां जिहड़ियां ने ना वह साडे सामने आ जांदियां ने। इसे सुहानी याद दे नाल आज दे प्रोग्राम एक कलाकार विच जी पी सी पी जी दे इस कला नू असी सलाम करते हैं, क्योंकि इन्नियां फिल्मां इन्ने गीत जो अज भी साडे मनोरंजन का हिस्सा ने, वो साडे दिल विच जिहड़े ने वो सानू खुशी पहुँचाते हैं। तो प्रोग्राम एक कलाकार विच हुण मैनू अपनी दोस्त शुभिता नू इत्थे इजाजत दो, ते जुड़े रहो आकाशवाणी रेडियो देना।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित

होने तुसी सुन रहे सी चंदन दास दी आवाज़ च। बहुत खूबसूरत गज़ल। गज़लां दा जिहड़ा सफ़र है ना, वो अक्सर दिल दियाँ उन्हां गल्लां तक लै जांदा है जो असी कह नहीं पाते। कदी दुआ बन के, कदी याद बन के, ते कदी किसी खूबसूरत एहसास वांग गज़ल जिहड़ी है ना, वो दिल नूं छू जांदी है। तो फिर आओ इसे नरम जे एहसास नाल सुनदे हां अगली गज़ल गुलाम अली साहब की आवाज़।

जगजीत सिंह जी की आवाज़ च तुसी सुनी दिल नू छू लैण वाली एक गज़ल। गज़लां जिहड़ियां ने ना वह दिल च वस जांदियां ने क्योंकि वह साडे अनकहे चले जज्बात ने उन्होंने कह जांदे ने। तो इस दे नाल ही हुण अगली जिहड़ी गज़ल है, क्योंकि कई बार जिंदगी च साडे करीब बहुत लोग हुंदे ने पर गल सिर्फ है कि असी उन्हां नूं पहचानना किवें है, ते जेकर सानूं मिल जान ते असी उन्हां नूं अपनी जिंदगी विच संभालना किवें है। बिल्कुल जी, यही खूबसूरत जज्बात ते इन्हां ही एहसासां नूं अपनी खूबसूरत आवाज़ दित्ती है पंकज उदास जी ने। आओ सुनदे हां उन्हां दी आवाज़ च ए दिल नूं छू लैण वाली गज़ल।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ये जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स आप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज़ की कड़ी मुताबक 10:03 हो रहे हैं। हुण पेश करन जा रहे हैं प्रोग्राम हलो फरमाइश। प्रोग्राम हलो फरमाइश दे विच तुसी शिरकत कर सकते हो। उहदे लई तुसी नंबर डायल करना है 0181-3342-173। तो इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभिता रहांगी जी तुहाडे नाल, ते तुहाडा सारिआं दा इस प्रोग्राम च स्वागत है। तुसी नंबर डायल करो, प्रोग्राम च साडे तक पहुंचण दी कोशिश करो, ते नाल दे नाल सुनो फिल्म झूम बराबर झूम। ते फिल्म चों राहत फतेह अली खान ते महालक्ष्मी ईर दी आवाज़ च गीत इंजॉय करो।

0: वाह जी वाह, प्रोग्राम हलो फरमाइश इस गीत ने जड़े और रौनक लगाई ते आगाज हो चुका है प्रोग्राम हलो फरमाइश का। तो आओ जानते हैं फिर प्रोग्राम च सब तो पहली फरमाइश कौन लेके आए ने। हलो
1: हलो, सत श्री अकाल मैडम।
0: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे ने जी?
1: मैं बोलदा जी मंडी गोविंदगढ़ तो, भूपिंदर सिंह हंस।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
1: थैंक यू मैडम।
0: हाँ जी, होर की हाल चाल ने?
1: ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया है मैडम। मैनू 65 साल हो गए जी रेडियो सुनते ने।
0: ठीक है जी, बहुत बढ़िया, यानी कि तुसी काफी लंबे समय तो जुड़े हुए हो आकाशवाणी रेडियो ना।
1: जी मैडम, 5 साल दी उम्र तो रेडियो सुनने आ।
0: वाह जी वाह। हाँ। कितना पुराना नाता है जेड़ा आज तक जारी है, ते उस दे नाल ही तुसी फिर बहुत एक ऐसे कह सकते हैं एक काफी लंबा सफर जड़ा है तय कीता रेडियो दे नाल।
1: हां मैडम, वो टूपा वाले रेडियो हुंदे सी।
0: हां जी,
1: उदों दा मैं सुनदा आ रहा ते आकाशवाणी जलंधर तो भी बहुत चिर दा जुड़िया होया जी। काफी समय तो मैं गुरबाणी सुनदा हुंना सवेरे
0: ठीक है,
1: शाम नूं भी ते अपना रात नूं 11 बजे तक प्रोग्राम सुनदा जी जेड़े भी आउने आ।
0: बिल्कुल जी, ते तुहाडी जिंदगी च किन्ना बदलाव लिया होएगा रेडियो ना?
1: हाँ मैडम, बहुत बदलाव लिया है ते सोना टाइम पास हुंदा जी, नाले मनोरंजन भी हुंदा नाले ज्ञान वर्धक भी हुंदा जी।
0: वाह जी वाह, आज फिर तुहाडी कॉल लग गई है ते किन्ने दिन बाद कॉल लगी वैसे?
1: ए मैडम लगी होगी मेरा ख्याल 3-4 महीने बाद।
0: ठीक है जी, फिर आज फरमाइश की है केड़ा गीत सुनोगे?
1: अज मैडम मैं धर्मेंद्र जी ते अपने वहीदा रहमान दी फिल्म है मन की आंखें।
0: ठीक है,
1: ते ओदा गीत सुनना चाहुंदा जी रफी साहब ते लता जी दी आवाज च। चला बिया आने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का जरों का कहीं भूल ना जाए।
0: ठीक है जी, असी जरूर पूरी करदे हां तुहाडी फरमाइश ते असी यही उम्मीद यही दुआ करदे हां कि तुसी जुड़े रहो रेडियो दे नाल ते रेडियो भी तुहानू खुशियां जिहड़ियां ओह दिंदा रहे।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू जी। लो जी, इन्हां दी फरमाइश असीं पूरी करदे हां, तुहाडी फरमाइश भी पूरी करनी है। प्रोग्राम शुरू होया है तो तुसीं नंबर डायल करदे रहो, तुहाडियां फरमाइशां पूरियां हुंदियां रहणगियां। 0181 2311 173। फिलहाल इंजॉय करो गीत।

0: शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार गिरगिट वांग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा हॉकी दी चलाकी दियां रमजां बयान करदा खिडारियां दा जनून मैदानां दा रोमांच मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानू सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
1: बिल्कुल जी, एक छोटे जे अंतराल तो बाद प्रोग्राम हलो फरमाइश असी एक बार फिर तो तुहाडे नाल जुड़ चुके हैं। तो साडे कॉलर दी फरमाइश सी कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी दा गीत उन्होंने कोई भी सुनने को कहा सी, ते लो जी इंजॉय करो ये गीत उदित नारायण दी आवाज़।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम हलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है, ते आओ जानते हैं हुन प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हलो
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, हाँ जी, कौन बोल रहे जी?
2: मैडम जी, मैं पॉल बोलदा, सरबा नगर जलंधर तो।
1: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
2: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा भी, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया तुहाडी पेशकारी है प्रोग्राम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिर केड़ा गीत सुनना अज तुहाडी कॉल लगी है ते?
2: गीत मैडम सुना दो, फिल्म दा नाम है होली है जी।
1: ठीक है,
2: गीत दे बोल है मेरी तमन्ना की तकदीर तुम सवार दो।
1: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दें तुहाडी फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
2: मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: लो जी, इन्हां दी फरमाइश असीं पूरी करदे हां। मुकेश दी आवाज़ च एंजॉय करो गीत।

0: मुकेश दी आवाज़ से तुसी गीत इंजॉय कर रहे से फिल्म होली आ रही जो ते आओ जानते हैं प्रोग्राम चो अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो
1: हाँ जी नमस्कार बेटा।
0: नमस्कार जी। हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी?
1: बेटा जी मैं शाम तरफी से सरोज कुमारी बोल रही हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा तो प्रोग्राम च।
1: बेटा मैं बड़ी खुशी है मेरा पहली बार फोन लगा।
0: बहुत सानू भी बहुत खुशी है साड़ी थोड़े नाल गल हो रही है थोड़ी जेकर पहली बार कॉल लगी तो फिर तो आज थोड़ा भी लकी डे हो गया।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तुसी सुनते हो प्रोग्राम काफी लंबे समय तो जुड़े हो?
1: बेटा मैं मेरी 77 साल दी है मैं तो 5-7 साल दी सी जब तो सुन दी।
0: वाह जी वाह बहुत मेनू
1: सारे प्रोग्राम दा शुरू तो सारा ही पता।
0: मैनू बहुत खुशी होंगी है जो इस तरह साढ़े लिसनर्स कहते हैं कि असं कई साल तो जुड़े हाँ तो थोड़े कि तब्दीली लिया होगा ना तुम किन्ने चेंजेस भी देखे हो।
1: बहुत ज्यादा बेटा बहुत ज्यादा।
0: हाँ जी तो कुछ तुम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो कि बदलाव लिया रेडियो थोड़े जिंदगी च?
1: जो कुछ भी चल रहा बेटा बहुत वधिया चल रहा समय के नाल नाल।
0: बिल्कुल जी
1: ते फिर बदलाव जरूरी है बेटा।
0: बिल्कुल जी बदलाव जरूरी है। तुहाडी आज फर्स्ट टाइम कॉल लगी है तुसी फरमाइश करो केड़ा गीत है जी तुहाडी आज पसंद दा सुनाइए।
1: मदर इंडिया दा गाना है वो मेरे लाल हां।
0: ठीक है जी जरूर पूरी कर दें तुहाडी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
0: थैंक यू जी। लो जी कई बार ना जिन्हें पहली बार कॉल लगती है उन्होंने जी खुशी है उन्होंने आवाज़ तो ही जी झलक रही होंगी है तो साढ़ा भी मन करता है कि असी जरूर फरमाइश पूरी करिए उन्होंने और सारे दरमाइशा पूरी करनी जिन्हें भी साढ़े लिसनर इस वेल्ले साढ़े जुड़े हुए हैं। बस तुम नंबर डायल करना जी 0181-2342-173 नंबर डायल करो प्रोग्राम से शिरकत करो तो अपने मन पसंदीदा गीत सुनो।

0: दोस्त फिल्म का गीत तुसी इंजॉय कर रहे से प्रोग्राम हालू फरमाइश मैं थोड़ी दोस्त शुभिता जी थोड़े नाल ते आओ जानते हैं हुन प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। हां जी कौन बोल रहे ने जी?
1: मैं मोहन सिंह पिंड भंगाला तो बोल रहा हूं जिला फाजिलका तहसील बौर जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च तुहाडा।
1: धन्यवाद जी।
0: किन्ने दिन बाद कॉल लगी है?
1: 10-15 दिन हो गए मैडम जी लगी कॉल ने जी।
0: ठीक है जी केड़ा गीत सुनोगे? ठीक है जी जरूर पूरी कर दे तुम्हारी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद जी। दो रास्ते फिल्म चो रफी साहब की आवाज़ इंजॉय करो ये गीत।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ से इंजॉय कर रहे थे जी फिल्म दो रास्ते दाए गीत। आओ जान दे आ हुन प्रोग्राम च लास्ट कॉलर केड़े ने। हेलो
1: हाँ जी
0: नमस्कार जी। हेलो
1: हाँ जी नमस्कार मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी कौन बोल रहे ने जी?
1: अशोक पिंड साबू वाले तो।
0: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा। ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए। लो जी नील कमल फिल्म चो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ च प्रोग्राम हलू फरमाइश का है आखिरी गीत और इसी गीत के नाल मैनू अपनी दोस्त शुभता नू दो इजाजत। सब चढ़ती कला च रहो खुश रहो तंदरुस्तियाँ निरंकार चढ़ा ना तुहानू सारयां नू बख्शे। इंजॉय करते जाओ ये गीत।

0: हुन तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम हालू फरमाइश मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
4: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए

0: 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़, सते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साड़ी स्रोते वेव्स ऐप राहीं भी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते ने। ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

टाली वाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद नवदीप चतरथ अर्नव चतरथ लाजवंती ते अनीता रानी और शिवा गोप प्रेम गोप कपिल शिवांश संगीता लिपि और दीपाली ये भी पहुंच गई है जी। और जिला पश्चिम सिंहभूम चाई बासा झारखंड तो इन्हों के नाम सानू सुनेहिया वजों मिले ने। हरियाणा झज्जर तो बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत ते मयंक भाटिया। लो फिर तुहाडे सारयां दी फरमाइश करन जा रही हां पूरी सतिंदर सरताज की आवाज़ तुहाडे सारयां दे रेडियो सैट ते।

नरेश कुमार पॉल सारे ही पॉल परिवार पिंड संघवाल जलंधर तो ए अपने सुनेहे नाल हाजिर ने जी। वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा दा भी सुनेहा मिल गया है। मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार नरगिस खातून और अगला सुनेहा मोहम्मद यासीन हाशमी नाजमा बेगम मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद तैमूर मोहम्मद कलीम अंसारी नई बस्ती गंज डुंडवारा तो इन्होंने सुनेहा भेजा है जी। और अगले सुनेहे दे नाल हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान और इरफान खान का इन्हें सुनेहा मिलया। इंद्रजीत मंगा नीलम मंगा पिट्सबर्ग कैलिफोर्निया यूएसए तो देखो किन्ना इन्होंने समय का ध्यान रखिया और अपना प्यार आकाशवाणी नाल इन्होंने जो दिखाया क्या ही बात है। पिंड भवानी तहसील पायल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो रणजोत सिंह हरजोत सिंह ये भी अपने मैसेज नाल पहुँच गए ने जी। पिंड ते डाकखाना खुईयां सरवर तो तहसील अबोहर जिला फाजिलका तो रमेश बिल्ला चावला राइजल हेजल विहान चावला आस्था जयश्री संतोष चावला हेमंत दीपक रमेश चावला रिजू बब्बू विहू चावला ते सारा ही चावला परिवार धमक जलंधर पेंदी च धमका पाण लई हाजिर। और अगला सुनेहा विजय तंबर ते ममता मुंडी खरड़ तो इन्होंने भेजा है अपना सुनेहा और अगले सुनेहे नाल सानू जिहड़े नाम दिख रहे ने सतीश मिगलानी विवान वीर सिंह लाठी गुरचरण ग्रोवर और अगला सुनेहा सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल कुमार विनीत कुमार और सोनम वर्मा न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरेंद्र शर्मा सीमा शर्मा प्रिंस शर्मा सारा ही शर्मा परिवार इन्होंने भी हाजिरी जरूर लगवाते ने जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो मोहम्मद सादिक मुश्ताक मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौर मोहम्मद शादाब खत्री और जामा मस्जिद रोड तो हाजी इसहाक लौलावानी मोहम्मद उमर कासमी हाजी अयूब शेरी बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून और सुमित रमेश साहू डुमराव बिहार तो डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी गोला बाजार बक्सर तो श्रद्धानंद आर्या अभ्यानंद आर्या परमानंद आर्या सारिमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान रजिंदर पाबला हरमन रितु सैनी गुरमन सैनी ग्रीन पार्क कलोनी पटियाला तो थोड़े सारियां दी रली मिली पसंद ते मैं पेश करन जा रही हूँ प्रोग्राम दा अगला गीत रंजीत बाबा दी आवाज़।

रानी अभिषेक मिड्डा ते दिव्या दा। प्रोग्राम च अगला सुनेहा सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सन्नी मन्नी काका, जनक नगर, जलंधर तो। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पी एस नहावकर और मोहन करांगले। चौंक बत्तियां वाला जिला फतेहगढ़ साहब तो बलविंदर बिल्ला माधोपुरी, राजकौर ज्योति गोल्डी बब्बू टिमाणा यूएसए, रामलाल खरोड़ा, सारा माधोपुरी परिवार। आकाशवाणी जलंधर बड़े ही पक्के पुराने स्रोते साढ़े, चिट्ठियां भी पाते ने, फोन इन प्रोग्राम च भी आते ने, ते व्हाट्सएप मैसेज के प्रोग्राम च भी हाजिर होंगे ने। क्या ही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सहारनपुर तो साढ़े बहुत ही सोहनिया चिट्ठिया पाने वाले स्रोते, चंदन नगर सहारनपुर तो आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, शुक्रिया। और सुनेहा भी बहुत ही सोहना होंगे। अगला सुनेहा प्रोग्राम ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो। और अस्तुपुरा जिला मऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर तो आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, धन्यवाद। लो जी, धन्यवाद तुहाडा जी, अपना कीमती समा निकाल के तुसी सानू मैसेज भेजा है। और प्रोग्राम च अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचाया जी आर पॉल ते सारा ही पॉल परिवार, सराभा नगर, जलंधर तो। और फाजिलका पंजाब तो भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवानशी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, सारा ही खेड़ा परिवार अपने सुनेहे नाल पहुँच चुका है। और तुहाडी तुहाडी सारयां दी जिहड़ी रली मिली पसंद है ना, प्रीत हरपाल दी आवाज़ गीत सुनन दी है। आओ फिर रल के सुनते हैं ते गीत दा मज़ा लैंदे हां।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
4: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर

0: भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722, जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: क्या ओदा मुंह खुला ते अवाक सी। जदों ओनू शब्द औड़े तां ओदा लहजा ओदे भरे गच दी चुगली खा रहा सी।
1: ये दुकान तुहाडी अपनी, मैं बड़ा मशकूर होवांगा जे ये पैसे तुसी वापस बटुए विच रख लवो।
0: ये किवें हो सकदा है, इन्ने साल करजा मेरी जमीर ते भार बनिया रहा है, मैं इहदे तों सुरखरू होना चाहुंना।
1: पर ये पैसे मैं नहीं लै सकता, वालिद साहब जिंदा हुंदे तां ओह भी कदी ना लैंदे।
0: कुछ शर्मिंदा जिहा हो के मैं पैसे बटुए विच पा लए, ओहदे चेहरे दी कस सुखावी हो गई।
1: हुण हुकम करो तुहाडी की खिदमत करिए।
0: फिर मेरे पैरी पाए अद्धो राणे बूटां वल वेखदा बोलिया,
1: गलबन 8 नंबर है तुहाडा, वधिया किड लैदर दा एक 8 नंबर दा इटैलियन शू है मेरे कोल।
0: मेरे ना ना करदिआं उहने ओह शू मैनू पहना दिता। किहो जिहा करामाती शू सी ओह, लाउणा चाहुंदा वी मैं उहनू ला ना सकिआ। मेरे पैरां नू ओह शू मुठियां भर रिहा जापदा सी। अजिहा शू पिछले कई वरियां तों मैं तांग रिहा सां, पर ओह मैनू दिल्ली दी किसे दुकान ते नहीं सी मिलिआ। पर मैं इहदी कीमत जरूर दिआंगा, हाँ इहदी कीमत तुहानू जरूर लैणी पएगी।
1: जरूर, पर पैसियां विच नहीं, इहदी कीमत तुहानू मुहब्बत नाल चुकानी पएगी। ये जोड़ी मैं वेचन वास्ते नहीं सी रखी, ये तो मैं किसी तुहाडे वर्गे प्यार वाले गाहक लई अमानत रख छड्डी सी।
0: इहने नू मैं वेख्या दुकान दा एक नौकर ट्रे विच चाह दा सामान, केक ते पेस्ट्रियां लै आया।
1: जे तुसी इस शू दी कीमत चुकानी ही चाहुंदे हो तां साडी ये चाह कबूल फरमा के चुकाओ। ये चाह जो शफीक बिना मेरे आखे ते तुहाडे लई लियाया है।
0: चाह पी के साबर हुसैन ते शफीक नाल गल वकड़ी पा के कदी दिल्ली आउण दा सद्दा देंदिआं मैं उहनां तों विदायगी लई। दुपहर ढल रही सी जदों मैं उस घर दे दरवाजे ते जाके दस्तक दित्ती जिथे मैं जम्मिया सां ते जिथे मैं अपनी जिंदगी दे पहले 20 साल बिताए सन। उस वेले एक बड़ा अजीब अनुभव मैनू होया, जिवें मैं उस घर दा दर नहीं सां खड़का रहा, कोई मेरे दिल दा दर खड़का रहा सी। एक बजुर्ग ने दरवाज़ा खोलिया, पहली नज़रे ही ओह मेरे ते छा गया। ओहदी तस्बीह, चिट्टी दाढ़ी, पहरावे ते शख्सियत ते प्रभाव तों ओहदी परहेजगारी ते खुदा परस्ती प्रतख सी।
2: आप
0: ते कोई होर शब्द ओहदे मुँह ना निकलिया। अपने बूहे दे बाहर दस्तार दाढ़ी वाला मुलाकाती खड़ा देख ओह ठठंबर गया सी। जी मैं दिल्ली तों तुहानू मिलना है, चुप चाप ओह मैनू निहारदा रहा। हाँ तुहानू मिलना है, ते नाले तुहाडे इस घर नू मिलना है जिथे मैं अपना बचपन बिताया, लड़कपन बिताया, कॉलेज दे दिन ते चढ़दी जवानी बिताई है।
2: तुहाडा नाम?
0: मैं अपना नाम दस्या।
2: आप तो शायर हो?
0: नहीं, मेरा मतलब हाँ किसी हद तक, पर आप किवें जानते हो? एक रमज भरी मुस्कान ओदे बुल्लां ते आ गई।
2: तुहाडा आउणा सिर मत्थे, अंदर तशरीफ लिआओ, आओ ना, ये तुहाडा अपना घर है।
0: सामने सौण कमरे विच्चों चिट्टे सिर वाली एक इस्त्री ने रता कुचाकिया ते फिर पित के ओले हो गई।
2: शबीर दी मां, वेखी तां साडे घर दिल्ली तों शायर आए ने।
0: की कह रहे हो, मैं कोई शायर शूर नहीं, जे हाँ तां किसे गिनती विच नहीं, बतौर शायर दे मैनू कोई नहीं जानता। ओही रमज भरी मुस्कान बजुर्ग दे बुल्लां ते आई।
2: असी जानदे हां।
0: हुण तक ओह इस्त्री खिलरी लिट कन पिछे समेट दी, सिर ते मोटी मलमल दा दुपट्टा लैके बाहर वेड़े विच आ गई सी। मैं जिथे खड़ोता सां उथों ही हथ जोड़ के सिर निवा दिता।
3: जिउंदा रहे पुत्तर, जिउंदा रहे, बड़ियां उमरां।
0: पता नहीं ओदी असीस विच की जादू सी कि मेरिया अखां विच हंजू चुभन लगे। इन्हे नूं दूजे कमरे विचों 20-22 वरियां दा एक गभरू ते 16-17 वरियां दी बड़े बीबे मूँह वाली एक कुड़ी बाहर निकल आए। गभरू ने अगे वध के मेरे नाल हथ मिलाया। वह गोरा चिट्टा बांका ते शकलवंद नौजवान सी। ओदे पहरावे ते फबनी विच एक नरोई स्वच्छता सी।

0: जी कथालोक प्रोग्राम तहत असी कहानी सुनी नवा ताजमहल।
1: बिल्कुल जी, कहानी जड़ियाँ ने वो जिंदगी दियाँ बहुत सारिया चीज़ों बयान कर दें, ये सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं होंगे। कहानियाँ तो जिंदगी दे वो पन्ने ने जिन्हां विच साड़ियाँ खुशियाँ दुख सुख ने ते हारां जित्तां लुकियां होंदियां ने।
0: बिल्कुल सही कहा तुसी, ते ए सिलसिला सी हर हफ्ते लैके हाजिर होंदे आ आकाशवाणी के खजाने चो, जो पुरानिया रिकॉर्डिंग्स ने साडे कोल ओ लैके हाजिर होंदे। ते इस खूबसूरत सिलसिले तो बाद हुण प्रोग्राम च एक गीत सुन लिए
1: जी जरूर।

0: ਹਰਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा।

खेला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समें दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। 1:15 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समें ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसी मिठा सिंह बडावली दे गाए लोक गीत सुणोगे। दूजी सभा विच 4:00 दीआं मुख खबरां तो बाद 4:02 ते आनंद माणोगे प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत दा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। देहाती प्रोग्राम दा समा रहेगा शाम 6:30। अज इस विच कम दीआं गल्लां, मंडियां दे भाअ, इस तों इलावा नवें बागां दी संभाल, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर T.S. चहल। इस तों इलावा कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। सत बजे किसान वाणी सुनोगे। अज इस विच खेती संदेश, किसान समाचार, मंडियां दे भाव दसे जाणगे। इस तों इलावा पशु पालन मेला, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर जसविंदर सिंह। सत बज के 40 मिनट समा रहेगा समाचार दर्शन दा। 7:45 ते तुसी आबशार प्रोग्राम दा आनंद माणोगे। रात 8:00 जिंदगी दे फलसफिया ते आधारित प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिंदगी हसीन है। 6:30 दिल्ली केंद्र तो तुसी सुनोगे 8:45 ते समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड, 9:45 ते इनसाइट्स। 10:02 ते तुसी शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुनोगे सुर साधना। अज इस विच पंडित विश्व मोहन भट्ट, इन्हां दा गिटार वादन सुनोगे राग हेमंत विच। 10:30 तुसी सरगम प्रोग्राम दा आनंद माणोगे। डीटीएच दी पंजाबी प्रसारण सेवा दे जरिए दिने 3:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते प्रोग्राम सौगात दा आनंद लोगे। इस तों इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जाणगियां। ए सन अज रात तक प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां।

फौजवीरो प्रोग्राम च अगला गीत तुम मिले फिल्म चो लिया गया। आवाज़ जावेद अली दी। इस गीत नु लिखिया सैयद कादरी ने और संगीत निर्देशक ने प्रीतम।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
3: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दस दे आ, ते तू वायरल ना होण दा।
2: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: की कहा, तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा, तुहानू फोन आया है

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े,
1: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: आज तक इस योजना नाल 9 करोड़ 50 लाख तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके हैं। कि तुसी भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: हेलो,
5: नमस्कार। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
6: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
7: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो, खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हां कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। लो सुनो यस बॉस फिल्म दा गीत। आवाजां कुमार सानू और अलका याग्निक दियां, गीतकार ने जावेद अख्तर और संगीतकार ने जतिन ललित।

फौजी वीरो तुहाड़ी नज़र कर रही हाँ, फिर तेरी कहानी याद आई। फिल्म आवाज़ साधना सरगम दी, संगीतकार ने अनु मलिक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
2: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
3: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों

0: की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार, सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम

मिठा सिंह बंडालवी की आवाज च हुणे तुसी सुन रहे सी राणी सुंदरा। आहुन सुनदे आ इन्हां दी आवाज च जानी चोर।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: रंगली धरती प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश कीता जा रहा है। आज तुसी मिठा सिंह बंडालवी दे गाए लोक गीत सुन रहे हो। आओ हुण सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च मिर्ज़ा।

Insano com um taco de amor, cabra. किसी ने कहा है कि वक्त दा हार पन्ना अज भावें धुंधला लगे पर यकीन रखो जो अज तुहाडी समझ तो परे है कल उही तुहाडी किस्मत होवेगा। जिंदगी दा सब तो सोहना पन्ना सब तो सोहना अध्याय बन जाएगा क्योंकि परमात्मा दी योजना परमात्मा दी जिहड़ी प्लानिंग है उसते भरोसा रखो क्योंकि परमात्मा दी भरोसा ही सब तो वड्डी आस्था है। जिंदगी एक बार मिलती है तो इस जिंदगी नूं खुल के जियो हस के जियो। तो इस दे नाल ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां की जिहड़ा कि तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम है। तो साडे स्रोतियां नूं बेसब्री दे नाल इस प्रोग्राम का इंतजार रहिंदा है। तो मैं तुहाडी होस्ट आर जे जसविंदर कौर तुहाडा सब का स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम की चिट्ठियां की शुरुआत करते हैं। देखते हैं साढ़े को पहले चिट्ठियां किड़ियां आईया ने जी। पिंड रायपुर डब्बा पंजाब तो फौजी मक्खन सिंह बूटा बल्ली शनी सनी और बाकी सारा परिवार नेड़े गगर हाजीपुर शहर तो मामा केहल मोहन चिंटू राम मामा मामी गुरमीत मासी सुदेश कुमारी रुलिया पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो चिट्ठी लिख रहा सोन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगन लाल राठी पोत्री हनु राठी लवकुश वर्मा मनदीप सिंह गोड़ कंचन कंजन बिरक विक्रम बिरफ कुलदीप ढिंगरा पिंड कुड़ियाणा तो बाबू सिंह महीने वाला छत्तरपाल सिंह खंगूड़ा गुरमीत सिंह बिरक पिंड कमाल वाला रणजीत कौर भट्टी बोहर सिंह भट्टी ते काका भट्टी ते इन्होंने कहा जी सानू कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ। इस दे नाल ही साडे कोल अगली चिट्ठी पहुंची है पिंड नकेरिया नेड़े मंडी रोड़ा वाले तो कश्मीर सिंह करनावल सुखा करनावल सुखचरण सिंह बराड़ ढाणी मत्था सिंह चढ़त वीर बराड़ अमानत बराड़ अनमोल सियाजप्रीत रहमत खुशप्रीत ते राणा हलवाई पिंड चकपखी तो ते लो जी इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हां सतिंदर सरताज दी आवाज़ दे विच इह गीत।

काटपाल, प्रवीण काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल, जन्नत काटपाल, चौधरी प्रेम सिंह ते महेंद्र सिंह। जिला मोगा तो पिंड समालसर तो लिख रहे ने जी लक्ष्मण सिंह कारू, वेरू, लवप्रीत, काली, विक्की ते मनप्रीत। ते अगली चिट्ठी साढ़े को आई है सदू शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनू प्रकाश, शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान। ते इन्हां ने सानू फरमाइश की है जी हरजीत हरमन दे गीत दी। ते इन्हां सारियां दी सपनी स्रोतियां दी फरमाइश ते तुहानू सुनाउण जा रहे हां हरजीत हरमन दी आवाज़ दे विच ये प्यारा जिहा गीत।

रेडियो सैट ऑन किया है तो वह अपनी फरमाइश भरी चिट्ठी लिखन सानू तो उन्होंने साडा पता नोट कर दो पता नोट कर लो जी प्रोग्राम चिट्ठिया मिठिया मार्फत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर तो पिन कोड है जी 144001 तो यह पता तुम जरूर लिख लिया होएगा तो प्रोग्राम का नाम है जी चिट्ठिया मिठिया इस दे उत्ते अपना नाम अपना पता तो अपने फेवरेट सिंगर का नाम तो उदा गीत लिख के सानू भेजो ताकि असी तुहाडी फरमाइश पूरी कर सकीए तुहाडी चिट्ठिया तुहाडा नाम तुहाडा पता असी पढ़ सकीए साडी पूरी कोशिश हुंदी है कि तुहाडियां सारियां चिट्ठियां प्रोग्राम च शामिल कीतियां जाण तो पर एक घंटे के प्रोग्राम में जिन्नी चिट्ठिया शामिल कर सकते हैं असं जरूर करते हैं तो तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करते हैं। इस दे नाल ही साडे कोल अगली चिट्ठी आई है जी सहारनपुर तो आशा ते सुरेश नारंग पिन खैरका सिरसा तो इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन हनीलोट मसीता डावली तो दर्शन लोट सरगुन इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर हनी इन्होंने जी दो बार अपना नाम लिखा है। जिला लुधियाना तो मुलापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा राज शर्मा मंजू शर्मा आशीष शर्मा बिट्टू जैन दीपक जैन पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन अरुणा जैन अभिषेक जैन गौतम जैन रसगुल्ला जैन नगीना जैन मुलापुर दाखा तो टीटू जैन जे बी आओ कृष्ण गोपाल शर्मा तो मुक्तसर तो सानू चिट्ठी लिखी है बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर धीमान रवनीत निशू तो भुपिंदर तो अगली चिट्ठी साढ़े को आई है जी ये पिंड अमीशा वाला फिरोजपुर तो मुख्तियार सिंह बरवाल तो उन्होंने सारे दोस्त मित्र तो इन्होंने सानू साबरकोटी के गीत की फरमाइश की है तो इन्होंने सारे की फरमाइश से तुम सुना जा रहे हैं साबरकोटी दे वास्ते विच ये पंजाबी गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी चिट्ठिया मिठिया ते साडे कोल हुण अगलियां चिट्ठियां पहुंचियां जी पिंड तेजा मोहड़ी तो मोहड़ी अंबाला तो बंसी लाल संधु ते पोतरा कबीर जैसवीर संधु पोतरियां वरनीत ते पवनीत कौर संधु ते पूरा संधु परिवार। अगली चिट्ठी साडे कोल आई आ रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया अपरा सिटी तो रूपलाल नाहर पंच सुभाष पंच सोमा ते अमरजीत अंबा प्रधान परमिंदर राजा इन्होंने कहा जी कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ सानू। मुहम्मदपुर सोतर ढाणी रतिया तो चिट्ठी लिख रहा जीवन सिंह बुक शंटी बुक सिमरन बुक कौशल्या राणी गुरशिंदर बुक बबू बुक कुलदीप बुक कीरत बुक भूषण खेड़ा जशन बुक ते पूरा बुक परिवार इन्होंने कहा जी हरजीत हरमन का कोई भी गीत सुना दिओ तो आपां फरमाइश पहले ही पूरी कर चुके हैं जी। छत्तीसगढ़ तो सानू चिट्ठी लिख रहा दतरेगी तो भागवत वर्मा लवई तो गुलाबदास मानीपुरी दक्षमन लक्षणपुर तो विश्वनाथ साहू ते चर डोंगरी पिपरिया तो दुर्गा राम साहू ते इन सारे रली मिली फरमाइश से तुम सुना जा रहा अमरिंदर गिल आवाज़ के गीत

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। लो सुनो अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां।

चक्कर जेतू कंपनी क्वार्टर मास्टर हौलदार अब्दुल हमीद नूं उन्हां दे शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। पंजाब सरकार ने नौजवानों नूं हुनरमंद बनाउण लई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII नाल रल के काम करन दा सद्दा दित्ता है। सरहदी सुरक्षा बल वलों भलके 11 सितंबर नूं जलंधर विच अपने फ्रंटियर सदर मुकाम विखे पेंशन अदालत लाई जा रही है। अज विश्व खुदकुशी रोकथाम दिवस है। यह दिन दुनिया भर विच खुदकुशियां रोकण अते मानसिक सेहत बारे जागरूकता पैदा करन लई मनाया जांदा है। हॉकी विच भारत पाकिस्तान नूं 19-0 नाल हरा के महिला जूनियर एशिया कप दे सेमीफाइनल विच पहुंच गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट दे पहले सेमीफाइनल विच आज भारत दा मुकाबला बंगलादेश नाल होवेगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार राती 8 बजे शुरू होवेगा। ये सन आज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साड़ी स्टूडियो की घड़ी मुताबिक इस वेले 4:03 ते 24 सैकेंड हो रहे ने। पेश है तुहाडे सारयां लई पंजाबी फिल्म संगीत।

नौहुन सुनो रोमियो रांझा फिल्म चुलिया गीत, आवाज गैरी संधू दी, संगीतकार ने जितेंद्र शाह और इस गीत नु लिखिया कुमार ने।

प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत दा आखरी गीत तुहाड़े नजर कर रही हां यारी जट दी फिल्म चो लिया आवाज सविता साथी दी और गीत तुहाड़े रेडियो सेट ते

स्थूला लकी न जाई नानक लीला। कथन मुताबक करते के गुण वर्णन नहीं किते जा सकते, उस दे बारे ता जानिया ही नहीं जा सकता। उस बारे कुछ कहना किस तरह संभव है? इस संसार विच सर्वव्यापी प्रभु सागर दी न्याई है। निक्की जी मछली वर्गा जीव किस तरह प्रभु दा अंत पा सकता है? हे प्रभु मैं असमर्थ हां। प्रभु तू ते सारे पासे व्यापक है, मैं तेरे तो परां जीवित नहीं रह सकता। जिमें मछली नू पता नहीं हुंदा मछेरा कौन है अते जाल किथे है, हे प्रभु मैं भी अनजान हर दुख वेले तेनू ही चेते कर दी हां। तू ते सबनी थाई भरपूर है, मैं तेनू बेसमझी करके दूर समझ लिया सी, हुण मैं तेरी ही रजा च राजी हां। तू मेरे कीते कर्मां नू वेख रहा है, मैं मुकर नहीं सकदा कि मैं तेरे वास्ते कुछ भी नहीं कर सकिया। हे प्रभु भावें मैं तेरिया दित्तियां दातां विच ही राजी हां, मैं होर

मेरे दर ते जावा ऐसा होर कोई दर नहीं है, मेरा शरीर अते जिंद आप ही हो। मेरी यही अरदास है, तू आप ही नेड़े है अते दूर भी, अते हर थां विचरदा भी है। आप ही अपनी सत्ता अनुसार सब कुछ वेखण वाला, सब कुछ सुनन वाला सिरजणहार है। जो आप जी नूं पौंदा है उही आप जी दा हुक्म मेरे सिर मत्थे है, उस विच ही मैं राजी हाँ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी सिरी राग विच उचारे हुए शब्द विच फरमाउंदे ने, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह

तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। इस शब्द गायन की तसी पाई जसबीर सिंह अते उनादे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु रामदास जी बिहागड़ा राग विच उचारित छंत दे तीजे भाग विच अकाल पुरख की समर्था अते विशालता दा खूबसूरत चित्रण करदे हुए फरमाउंदे ने कि हे सर्व कला समर्थ, सब तो वड्डे प्रभु आप महान हो। मैं थोड़ी मत नाल आप जी दे बारे की कथन कर सकता हाँ। तुसी तां बिना किसे वितकरे दे ना शुकरे जीवां दी वी प्रतिपालना करदे हो। आप समदृष्ट हो अते कृपा दे घर विच ही रहिंदे हो। हे प्रभु, तुसी मेरी समझ तों परे हो। बुद्धि मंडल दियां परतां आप जी दी होई कृपा बारे कुछ भी नहीं समझ सकियां। मैं नीवी मत वाला आप जी बारे की जान सकता हाँ। मैं मूरख ने तां आप जी दा अमोलक नाम छड़ के पशु मत रखदे हुए कौडियां ही इकट्ठियां कीतियां ने। मैं अन्याणी मत वाला बारिक हाँ। ना थिर रहण वाली माया जो त्यागनी चाहिदी सी पाप कर करके जोरदार रहा। हे प्रभु, हुण मैं आप जी दी शरण विच आया हाँ। कृपा करो मेरी शरण आए दी लाज रख लो जी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पाल है अकिरत कना पूरन दृष्ट तेरी राम। इस शब्द का गायन किया भाई हरि सिंह ते उन्हां दे रागी।

0: तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरी सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरमीत सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु अर्जुन देव जी का उचारण किया होया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 547 ते ब्यागड़ा राग विच अंकत है। ये छंत दा तीजा पद है। इस पद शब्द विच धन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज उस अकाल पुरख परमेश्वर दी सिफतो सलाह इउं वर्णन करदे हन। हे प्रभु जी, तुसी वड्डी ताकत भाव समर्था वाले हो। मेरी अकल बहुत छोटी जही है, तेरे इस वडप्पण नू समझ नहीं सकती, क्योंकि हे प्रभु तेरी तां नदर ही इकसार है। भाव तू सबना नू इकसार देखण वाला है। हे प्रभु तू तां अकिरत कणां दी भी पालना करदा है। इस प्रथाए धन श्री गुरु अर्जुन देव जी दा श्री राग विच मुबारक अंग 83 उपर बचन सुभाए माण है। हे प्रभु तू उना नू भी पालदा है जो तेरे कीते उपकारा नू भुला दिंदे हन। इना ना शुक्रियां दी रोजी दा प्रबंध भी प्रभु आप करदा है। हे प्रभु तू सदा ही जीवां दियां भुलां बख्शण वाला है। गुरवाक है अकिरत कणां नू पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। गुरबाणी मुताबक दरअसल अकिरत कण कौन हन? माज राग दी वार विच आदि गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी दा पावन पवित्र बचन है जो 143 अंग उपर सुभाए मान है। सतगुरु फरमाउंदे हन, अपने मन दे पिछे तुरन वाले मनमुख लून हरामी बंदे परमात्मा दे कीते उपकार दी सार नहीं जानदे। ओ बस विखावे वास्ते भाव बद्दे रुद्दे ही उस नू सलामा करदे हन। इस तरह उस खसम नू प्यारे नहीं लगदे, भाव पाउंदे नहीं हन। मनमुख लून हराम क्या ना जाणिया, बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया। पर प्रभु ऐसा मेहरवान है, किरपालू है, उस दे गुणां दा वख्यान करदियां होयां कलगीधर दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पावन बाणी अकाल उस्तत विच उचारण करदे हन। जो प्रभु जड़ ते चेतन वस्तुआं नू रिजक दिंदा है, जमीन ते आकाश विच विचरण वालियां नू भी संभालदा है। हे प्राणी तू क्यों चिंता करदा है ते डोलदा है,

0: तेरी सार संभाल भी प्रभु ही करण वाला है। बचन हन जान को देत, अजान को देत, जमीन को देत, जमान को दहें, काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मा पत लह। विचार अधीन शब्द विच बख्शिश करदे हन, अगाद बोध अपार करते मुहे नीच कछु ना जाना। मनुखी मन दी समझ तो बाहर, प्रकृति दे पारावार तो परे, बेअंत प्रभु तू अथाह है। मैं अल्प बुद्धि वाले ने अते कर्मा करके नीच ने, तेरे कीते पर उपकारां दी सार नहीं जानी। धन श्री गुरु नानक देव जी इस प्रथाए राग गौड़ी चेती विच रहमत करदे हन। मुबारक अंग 156 उपर ये बचन सुभाए मान हन। हे मेरे मालक प्रभु, तेरे गुणा नूं कोई नहीं जान सकता, पर दूजे पासे मेरे कीते औगणा दा भी कोई अंत नहीं। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी औगण मेरे। रतन त्याग संग्रहण कौडी, पशु नीच एयाना। हे मालक, हे परम पिता परमात्मा जी, मनुखी मन दा सुभा है यह रतना वर्गे कीमती पदार्थ छड, कौडियां वर्गे तुच्छ पदार्थ इकट्ठियां करदा रहिंदा है। गुरु ज्ञान तो विहूणा पशु अते नीच बिरती वाला हो के अणजाण ही भौंदा फिरदा है। गाफलताई विच सुत्ते हुए मन नूं झंझोड़दियां सूही राग दी वार विच दूजे गुरदेव धन गुरु अंगद देव जी महाराज बख्शिश करदे हन। जीवन रूपी रात दी खातर धन पदार्थ एकत्र करदा रहा, पर मौत रूपी सवेर हुंदियां ही इस नूं संसार दे पदार्थां नूं छड के जाना पैंदा है। जीव आत्मा दे पास बस पछतावा ही रह जांदा है। रात कारण धन संची है, भलके चलन होए नानक नाल न चलई फिर पछतावा होए। श्रोमणी भगत कबीर जी महाराज जी दे पावन बचन हन जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर श्लोक भगत कबीर जी दे सरलेख हेठ विराजमान हन। बचन करदे हन, कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर, चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोर। हे कबीर, प्रभु नालों टुट के निरी माया जोड़न दा की लाभ, जिस मनुख ने तरलिया नाल जोड़ के लखां करोड़ां रुपए भी इकट्ठे कर ले होण, पर मौत उपरंत उस दे संबंधी रिश्तेदार उस दे लक नाल बन्नी हुई वांसली भाव ओ लंगोटी जिस विच माया सी उस नूं तोड़ लेंदे हन। इस पावन पवित्र शब्द दे अखीर विच पंचम गुरदेव धन श्री गुरु अर्जुन देव जी उस प्रभु अग्गे अरदास करदे हन। नानक सरण समर्थ स्वामी पैज राखो मोरी। हे सब ताकतां दे मालक समर्थ मेरे स्वामी प्रभु जी, मैं तेरी शरण आया हाँ, कृपा करके मेरी पैज इज्जत रख लवो जी। तनासरी राग विच पंचम गुरदेव जी दे बचन हन, हे प्रभु असी तेरे ही आसरे परने हाँ, सानू तेरी ही सहायता दी आस है, तू ही साडा सज्जन है, तू ही सानू सुख देण वाला है। हे दया दे घर, हे सब दे रख्या करन वाले, साडी दर ते आयां दी लाज रख, असी तेरे दर दे गुलाम हाँ। तुमरी सरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, रख हो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले।
1: तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोरी राम। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी गुरमीत सिंह। राग सूही विच पंचम पातशाह प्रभु की कीर्ति करन दी लोचा रखण वाले जीव वल्लों रब अगे कीती हुई बेनती बारे दसते ने कि हे दीना उत्ते दया करन वाले दयालु प्रभु, मेरी बेनती सुनो। जिमें साधु जन तेरे गुण गाउंदे ने, हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे वास्ते भी कोई सबब बना।

कि मेरी रसना भी आप जी दा नाम उचार दी रहे। तेरा सिमरन जीवन दी न्याई है, पर जिस ते तू कृपा करदा है उही तेरा निकटवर्ती बनता है। भगत जना दी भुख नाम रूपी आहार नाल ही मिटदी है। नाम दा दाता तू ही है, तेरा नाम जपदिया ही संता महापुरशा ने आत्मिक सुख माणिया है। ए सब कुछ देण वाला दाता सब कुछ तो वाकिफ है। से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे साथियां वल्लों गायन कीता होया।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है।

0: इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। एक जरूरी सूचना, पंजाब हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश दे बीएसएफ पेंशनर लई पेंशन नाल संबंधित शिकायतां दे निपटारे लई पेंशन अदालत 11 सितंबर 2026 नूं फ्रंटियर हैडक्वार्टर बीएसएफ जलंधर विखे सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक आयोजित कीती जाएगी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण तुहानू दस दिए अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। साढ़े 6 बजे देहाती प्रोग्राम च अज सुनोगे काम दियां गल्लां, मंडियां दे भाव, नवे बागां दी संभाल ते गलबात करनगे डॉक्टर TS चहल। स्पॉन्सर प्रोग्राम किसान वाणी सुनोगे शाम 7 बजे। अज इस प्रोग्राम च सुनोगे खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल, मंडियां दे भाव ते पशु पालन मेला 2026 ते गलबात करनगे डॉक्टर जसविंदर सिंह।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आ सुनते हैं देश गान।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए, हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ ने एक सेहतमंद, सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाउण लई समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। पंजाब ते यूएई दरमियान व्यापारक निवेश ते सनती भाईवाली नूं होर मजबूत करन लई शारा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल नाल रणनीतिक गलबात। पंजाब के साबका मंत्री भगत चुन्नी लाल का अज पूरे सरकारी सन्माना नाल अंतम संस्कार कर दिता गया है। माई भारत पंजाब ने सूबे भर के 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों नू myBharat.gov.in पोर्टल से रजिस्टर करन अते विकसित भारत क्विज नू करन दी अपील की थी। ते भारत अज चीन के मोकी विखे पाकिस्तान नू 9-0 नाल हरा के औरतों के जूनियर हॉकी एशिया कप के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब के राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ नू एक सेहतमंद, सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाउण लई एक निरंतर रहणयोग समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। उन्होंने नशा तस्करां नू चेतावनी दिती कि वह गैर कानूनी व्यापार छड्ड देण जां तेज कार्रवाई का सामना करन। इस दे नाल ही उन्हां जोर दे के कहा कि नशाखोरी नाल जूझ रहे व्यक्तियां नाल हमदर्दी नाल पेश आना चाहिए अते नशियां दी लत तों बाहर आउण, सिक्ख्या ते रुजगार वल उन्हां दी यात्रा विच उन्हां दी मदद कीती जाणी चाहीदी है। ओ नगर निगम चंडीगढ़ वल्लों कराए गए एक नशा मुक्त जागरूकता प्रोग्राम नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने स्वय सहायता समूह SHGs वल्लों

0: कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आज तक इस योजना नाल 9 करोड़ 50 लाख तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। जे तुसी भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: पटवारी साहब लंघ आईए जी,
3: आजो आजो आजो बल साहब बच्चों वाले, ओ आजो।
2: पटवारी साहब जय हिंद जी।
3: जय हिंद जी, जय हिंद जी। और सुनाओ बल साहब की हाल चाल तुहाडा?
2: हाले चाले वाह वाह वधिया, चढ़दी कला मेरे उस रब दी, असी तां कहिंदे आ सब ते बनी रहे। तुसी सुनाओ?
3: तगड़ा जी, बिल्कुल तगड़ा। देखो तुसी कहा ना सब तो बनी रहे मेहर।
2: हाँ जी,
3: परमात्मा ते मेहर सब ते बनी रहनी चाहीदी है
2: जी,
3: और रहिंदी भी है।
2: अच्छा जी।
3: पर इंसान जड़ा है ना जी,
2: हाँ जी,
3: ओ अपने आप दे विच इन्नियां मुश्किलातां दे विच अपने आप नूं पा लैंदा
2: जी,
3: कि जिवें कि ओ राह जांदे होए ना कहिंदे जिद्दां पंगा लै लिया।
2: अच्छा जी।
3: जिवें आपां जे गल करिए थोड़ा बहुत पैसियां दी गल कर लईए या पढ़ाई दी गल कर लईए या फिर उवें ही आपां जिंदगी विच ना जी नठ भज पई हुई है
2: जी।
3: जिंदगी इस वेले स्ट्रैस दे विच है, दबाव दे विच है
2: जी,
3: तो इंसान किसे वेले अपने जदों टीचे पूरे प्राप्त नहीं कर पाता।
2: हाँ जी।
3: जो उसने लक्ष्य बन्ने हुंदे है
2: जी
3: अपनी जिंदगी दे विच,
2: हाँ जी,
3: जदों प्राप्त नहीं कर पाता ना
2: जी,
3: उस वेले वो ये सोच

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
1: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आज तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। जे तुसी भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभां की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आ सुनते हैं स्पोंसर प्रोग्राम किसान वाणी।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज कराण।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता की मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी जसप्रीत कौर ते रेडियो ते समा हो गया है तुहाडे ते साडे सांझे प्रोग्राम किसान वाणी दा। क्योंकि धरती मां दी सेवा करदे जो दिन रात पसीना वहाउंदे ने उन्हां मेहनती किसान वीरां लई असीं नवें सुनेहे लियांदे हां प्रोग्राम किसान वाणी दे विच। ते फिर आओ जानिए अज दियां नवीयां खेती खबरां अते खेती माहिरां दियां खास सलाहां। ते दोस्तों, इस तो पहला कि आपां होर गल्लां बातां करिए, आओ सुनदे हां एक गीत।

0: दोस्तो उम्मीद है तुहानू साडा अज दा इह किसान वाणी प्रोग्राम जरूर पसंद आया होवेगा ते तुहाडे लई लाहेवंद वी जरूर रहा होवेगा। सो इस दे नाल ही मैनू जसप्रीत नू दियो इजाजत, धन्नवाद।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नाल छोटे किसानां दा भविख होएगा सुरक्षित
2: अते 60 साल दी उम्र वालेयां नू 3000 रुपए महीने दी पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तों 200 रुपए महीने दी किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकदे ने 18 तों 40 साल तक दे किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
1: सारे किसान भैण भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज करान।
1: अन्नदाता दी मेहनत नू समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी। किसान वाणी प्रोग्राम दे प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।

0: कर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: आओ सुनते हैं देशवासियों दे इस मुहिम संबंधी की विचार ने।
2: मैं गुरप्रीत सिंह, प्रिंसिपल ITI फरीदकोट। प्रधानमंत्री जी की यह अपील बिल्कुल सही है। जदों त्यौहार जां आम दिनों विच लोक बाहरला समान छड्ड के साडे स्थानक कारीगरां अते छोटे दुकानदारां तों खरीदारी करदे हन तां पैसे अपने ही देश दे घरां विच रहिंदा है। साडी भारतीय उत्पादां दी क्वालिटी बहुत सुधर चुकी है। कपड़े तो लैके रसोई दे समान तक सब कुछ देसी अते मजबूत मिल रहा है। असीं तां हुण बाजार जाण वेले यही ध्यान रखदे हां कि मेड इन इंडिया ही लिया जावे। अपना पैसा अपने लोकां दी जेब विच जावे, इस तों चंगी गल होर की हो सकदी है।
3: मैं प्रवेश शर्मा भारती मोहाली तो बोल रही हूँ। त्योहारों का सीजन आने वाला है ते सारे देशवासियों नु अनुरोध है, विनती है कि अपने देश का बढ़िया माल ही यूज करन। जिवें दिवाली है, अपनी स्वदेशी मिठाइयां, स्वदेशी गिफ्ट जो भी तुसी देंदे हो, जिहड़ा लोकल तुहाडे बंदा है उही तुसी यूज करो। अपने देश का पैसा साडे ही देश विच रहे, इदां दा कुछ सिस्टम डिवेलप करो कि लोकी साडे देश च आन, वह पैसा खर्च करके जान, ना कि असी अपना पैसा बाहर भेजिए। और अपने देश की अर्थव्यवस्था नु इन्ना क मजबूत बनाओ कि 2047 च साडा भारत विश्व गुरु बने, विकसित भारत बने।
4: मैं डॉक्टर आरती महाजन। स्वदेशी भारतीय वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं को कम से कम प्रयोग करें। अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए कि हम जो है लोकल सामान को परचेज करें, लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके काम को बढ़ावा दें। यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन वेडिंग्स करनी चाहिए कंपैरेटिवली कि हम फॉरेन जाएं या बाहर की लोकेशंस को ढूंढें। इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी, हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलप होगी और भारत में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेके आएँ।

हुण तुसी सुन रहे सी आबशार प्रोग्राम च गज़ल। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रात दे 8 बज रहे ने, सुनते हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

जी दोस्तों, हाजिर है थोड़ी अपनी दोस्त कविता प्रोग्राम जिंदगी हसीन है लेके। कहते हैं कि जिंदगी सचमुच बहुत हसीन है, पर कई बार असी अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपने पास ते अपनिया नाकामियां नूं इन्ना दिल नाल लगा लैंदे हां कि साडी जिंदगी किन्नी खूबसूरत है यह नज़र ही नहीं आता। क्योंकि अज दी शाम असी एक बहुत ही प्यारी ते उम्मीद भरी गल करांगे। हर सवेरा एक नवी शुरुआत है, ते जो बीत गया वह वापस नहीं आना, पर जो आने वाला है वह साढ़े हाथ में जरूर है। कहते हैं कि रात भावें किन्नी भी लंबी होवे, सवेरा जरूर आता है। डिगे हुए बंदे नूं भी वक्त दोबारा खड़ना सिखाता है। जिंदगी नूं कल दे गमां नाल बर्बाद ना करो। हर नवा दिन कहता है चलो अज तो फिर शुरू करो। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं के दे इस खूबसूरत गीत आशाएं दे नाल।

केके दी आवाज दे विच खूबसूरत गीत सुन रहे सी आशाएं। दोस्तों जिंदगी विच कई बार असी सोचते हैं कि काश काश कि मैं वो फैसला ना किता हुंदा, काश वो रिश्ता ना टुटदा, काश मैं वो मौका ना गवाया हुंदा, ते काश मैं थोड़ा होर मेहनत कीती हुंदी। पर जिंदगी दोस्तों काश नाल नहीं चलती। जो हो गया वो साडे कंट्रोल विच नहीं, पर हुण की करना है यह तो जरूर साडे कंट्रोल विच है ना। इस करके अपने पास्ट नू हमेशा कोसदे ना रहो, उस तो सबक लवो, उन्हें एक लैसन बनाओ, क्योंकि हर गलती तुहानू तोड़न नहीं आती, कुछ गलतियां तुहानू सिखाण भी आंदियां ने। जो बीत गया उन्हें भुल जाना ही चंगा है, हर जख्म नू वार वार सहना जरूरी नहीं। कल दी हार नू अज दी पहचान ना बनाओ, जिंदगी नू एक होर मौका देना जरूरी है। आओ अगला गीत सुनते हैं। आवाज दिती है सुखविंदर सिंह, अभिषेक नैलवाल ने, ते गीत दे बोल ने परिंदा।

दोस्तों दुनिया तुहाडे ते यकीन करे या ना करे तुहानूं अपने आप ते यकीन होना चाहिदा है। जदों तुसी अपने आप नूं कहिंदे हो ना कि मैं कर सकदा हां, मैं दोबारा खड़ सकदा हां, मैं अपनी जिंदगी बदल सकदा हां, तां अंदर तों एक नवी एनर्जी पैदा हुंदी है, एक नवा जोश हुंदा है। लोग तुहानूं सिर्फ तुहाडी सक्सैस नाल जज करनगे, पर तुहानूं पता है कि उह सक्सैस ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਖੁਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ

दोस्तों अखीर विच कहांगे कि ना हार तो डर ना वक्त तो हार। हर दिन अपने आप नूं दे एक मौका हजार, जो बीत गया वो कहानी बन गया, जो आने वाला है वो तेरी नवी कहानी बनेगा। बस उम्मीद दा दिया दिल विच जगदा रखी, जिंदगी हसीन है इनू हमेशा जिंदा रखी। ते आओ अखीर विच सुनदे हां आलिया भट्ट दी आवाज़ दे विच, ए जिंदगी गले लगा ले।

0: माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड। अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग अल्पकालिक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, क्रॉप्स, ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस

0: के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। 2 दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th

0: to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार

0: The news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनक़दा पहले बैन-अल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल भारत पहुँचने की तवक्को है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नज़रिए के तहत आबोहवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गांव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारियों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ की है। मरकज ने ई कॉमर्स जाब्तों में तरमीम करते हुए कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर शुदा फहरिस्तों और तलाश के नतज में हेर फेर से मुतालिक जवाबित मजीद सख्त कर दिए हैं। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का एक तमगा भी शामिल है। और खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैन-अल-अक़वामी कानून, बातचीत और कसीर मुल्की तआवुन पर मबनी एक महफूज, पुरअमन और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि साइंसी डेटा को खुलेपन और दयानतदारी के साथ पूरी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह बात आज फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक़दा बैन-अल-अक़वामी खलाई समिट से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कही।
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश की हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है, तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी।
2: और जो पशुधन है, हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है, तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन, रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है, तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: तो वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
2: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मुख्यतः जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है, और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है,
1: और अनाज,
2: जी मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं, और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85-90% के आसपास दलहन भी बारानी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र है जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है।
2: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं, और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन स्तर हम बना के रखते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घकाल की बात

0: तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सकें।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती हैं, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती हैं?
0: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण, और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री या फसलों

0: भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती है?
1: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा यह है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है। यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहां पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
0: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
1: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण हैं, किसान हैं जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश हैं जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रीडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उन पे मंथन करेंगे और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में, तो उस पे मंथन होगा क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे और जो ये फसल प्रणालियां हैं बारानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
0: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
1: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी। और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
0: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
1: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है। कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती। बीजीय मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है।

0: और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी
1: जी
0: विशेषकर एफपीओ का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और जो बरानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बरानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो, और ICRISET हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
0: ICRISET जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है,
1: जी
0: सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और
1: जी
0: सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है, और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, और ICAR का और जो ICRISET का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके, उस पर बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
0: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए। तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो शस्य तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हो उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सब का उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर वर्मा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

हुण तुसी सुन रहे सी शास्त्री संगीत सुर साधना प्रोग्राम च। गिटार वादन ते राग हेमंत, कलाकार से पंडित विश्व मोहन भट्ट। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रात दे साढ़े दस हो रहे ने। पेशे प्रोग्राम सरगम। कहते हैं रात की खामोशी में जब कोई धुन उतरती है, दिल की गहराइयों में एक कहानी बिखरती है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि दिल में महसूस किए जाते हैं। प्रोग्राम दा पहला गीत सुन दिया, आवाज़ देती है

कहते हैं कुछ सुर यादों को छू जाते हैं तो कुछ नगमे दिल को बहला जाते हैं। रात चाहे कितनी भी खामोश हो, गीतों के साथ खूबसूरत बन ही जाती है।

जाए, शायद वही रिश्ते मोहब्बत कहलाते हैं। एक दिल की धड़कन जब दूसरे दिल को सुनाई दे तो समझो मोहब्बत ने दस्तक दी है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बस एहसासों से बनते हैं।

कहते हैं फूल भेजना तो बस एक बहाना है, इन फूलों में छुपा दिल का अफसाना है। खुशबू पहुंचे आपके दिल तक मेरी, बस इतना सा मोहब्बत का नजराना है। कुछ फूल महज फूल नहीं होते, उनमें किसी की याद और प्यार छुपा होता है। और जब कोई दिल से फूल भेजे तो हर पंखुड़ी में एक खूबसूरत एहसास होता है।

लता मंगेशकर ते मुकेश कुमार दी आवाज च सुन रहे सी खूबसूरत गीत। कहते हैं कागज पर लिखे कुछ अल्फाज ही तो थे, मगर उनमें छुपे एहसास बेहिसाब थे। हर लफ्ज में थी किसी की मोहब्बत, हर खत में दिल के कुछ ख्वाब थे। कभी खत भी दिल की आवाज हुआ करते थे, लफ्जों में छुपे जज्बात हुआ करते थे। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, मगर वो इंतजार कहाँ, वो एहसास कहाँ। आओ अगला गीत सुनते हैं, आवाज देती है मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों, जिंदगी सच में एक सुहाना सफर है। हर मोड़ पर कोई नई कहानी मिलती है। बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आओ इस प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं। आवाज दी आशा भोसले ने और गीत दे बोले, जिंदगी एक सफर है सुहाना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभाव बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on Earth from

0: climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
0: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space

0: मोना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
1: बिल्कुल, दसवां टूर्नामेंट है, 10 बार इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तो डोमिनेंस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो यही है। और जिस तरीके से आज खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, हम पहले बात कर रहे थे कि रन में शायद हम पीछे रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने वो कमी पूरी कर दी। और स्पिनर्स खास तौर पे यहाँ बात करेंगे, दीप्ति शर्मा की, क्या मैच विनर प्लेयर है, फॉर्मेट कोई हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में, और अब भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा 11 विकेट उनके नाम हो गए हैं एशिया कप में भी, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन।
2: जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा का, 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, साथ ही साथ नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, दोनों विकेट उनको आखिरी 2 गेंदों पर मिले हैं। साथ ही साथ श्री चरणी जो इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस साल भारत की लीडिंग T20I विकेट टेकर हैं, उनके नाम 1 विकेट, और प्रेमा रावत ने भी 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। रविंद्र, देखने में ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा, एक समय लग रहा था कि हम 10-15 रन पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी इस रन चेज में टक्कर देता नजर नहीं आया।
3: देखिए शुरुआत में तो जैसे 2 ओवर निकले थे, 3 ओवर निकले तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर शेषा शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इत्ता है श्री चरणी। ये बॉलिंग एनालिसिस शायद उसके ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो 4 ओवर में 14 रन और 1 मेडन है, 1 मेडन T20 में होना बहुत बड़ी बात है, और ये जो बॉलिंग दिखा रहा है ये पूरे मैच को पलट देती है। श्री चरणी इस समय एक स्पिनर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो श्री चरणी बॉल कर रही है वो वाकई उसको लेवल बहुत ऊपर है, इसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी टीमें इस समय धराशायी होती दिख रही है।
0: जी, और इसी बात को थोड़ा आगे लेके भी जाए तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट में मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने शुरुआती फेज में हम देखेंगे पहले 6 ओवर्स के अंदर कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि फास्ट अटैक के थ्रू अग्रेसिव क्रिकेट से इनको लीड दिलवा सके, बट दे वर नॉट एबल टू स्टिक टू दैट मोमेंटम एंड पेसिंग। कंटिन्यूअस विकेट लॉस affected the Bangladeshi women very strongly today, Mona.
1: बिल्कुल, आप देखिए कि 4 विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का, और शुरुआत में लगा था कि 1-2 अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था ज़बरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे, पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच बाद में भी छूटा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फील्डिंग लैप्सेस भारी पड़ जाए या बांग्लादेश के बैटर्स आज अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन वो जो नियमित अंतराल पे उनके विकेट गिरते रहे और वो मोमेंटम बन ही नहीं सका, जिसको कहते हैं कि 150 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक एंकर चाहिए जो पारी को संभाल के खेल सके और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी दे, वो कहीं नजर नहीं आया। गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट होते चले गए।
2: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं?
4: मेरा काम है जी, पुराना जिला फाइल का पंजाब से बोल रहा हूं, कुलदीप जी।
2: जी बताएं।
4: मैं पहले तो सब देशवासियों को अपनी जो टीम है वुमेन टीम है फाइनल में पहुंची है उसके लिए बधाई देता हूं जी, और आज तो ना शेफाली वर्मा ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी हमें जी।
2: ये कह रहे हैं शेफाली वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इनको वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई।
3: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको याद आई, वीरेंद्र अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, चाहे 2-3 चांसेस मिले लेकिन वाकई अच्छी बैटिंग करके उन्होंने टीम को स्कोर को 150 तक पहुंचाया, नहीं तो टीम का स्कोर लग रहा था कि 125-30 पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन लेकिन ऐसी बैटिंग उनसे कंसिस्टेंटली चाहिए, क्योंकि 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं। हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश को भी पहले 6 ओवर में 40 रन तो चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्पिनर्स के बाद गेम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इसलिए वो मीडियम पेसर्स को अटैक भी कर रहे थे शुरू में कि इनको जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सके, लेकिन वो श्री चरणी ने वो तीसरे ओवर में आके वो गेम को पाछा पलट दिया।
0: सवाल मेरा आपसे मोना ये होगा कि हम बात करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी हुई है ओवर द ईयर्स, इजाफा जिसको हम कहते हैं उनके खेल के प्रदर्शन में भी, लेकिन क्या आपको सही मायने में दिखता है दैट द बांग्लादेशी वुमेन्स क्रिकेट हैज इवॉल्व फॉर द बेटर और देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन बांग्लादेशी वुमेन क्रिकेट?
1: देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते, बेहतरी हुई है, उनके पास कई अच्छे खिलाड़ी आए।

0: क्या बात है भी, क्या बात है। सो साढ़े वेले साढ़े अगले कॉलर दोस्त भी पहुंच चुके ने, ते आओ फिर रابطہ कायम करते हैं उन्होंने नाल। हेलो,
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो?
1: जी मैं मंजीत मलिक खैर कर।
0: मंजीत जी बहुत-बहुत स्वागत है पूरे।

मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं आप सब सूझवान स्रोतियां ते दर्शकों का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने निमाणे जे माण नूं माण बख्शा है। ते मेरी भी आप सब लई इहो दुआ है, जेड़ा अज तक होया ना होवे, मैं ऐसा थोनू प्यार दियां। मेरी उम्र हजारां साल होवे, हर साल थोड़े तो वार दें। सो गीत पेश है कि जदों दिलां दी वही ते इश्क दे खाते खुल देन, ते हर दिल चो आवाज की निकलती है।

जी दोस्तों, तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात अपने दोस्त कमल दे नाल आकाशवाणी पंजाब ते। तो तुसी सानू कॉल कर सकते हो, साडा नंबर है 0812-43-141 ते अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश सानू दस सकते हो ते असी जरूर जरूर उन्हूं पूरी करन दी पूरी कोशिश करांगे। ते जद तक तुसी पहुँचते हो ते साडे वलों गीत संगीत इदां ही चलदा रहेगा तुहाडे नाल।

0: हेलो,
1: सत
0: श्रीकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तू? मनजीत
1: मनजीत कौर बोल रही हूँ,
0: जी की हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ।
1: दिल्ली तो।
0: चलो वधिया जी, दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए। बहुत वधिया
1: हाँ जी ठीक है जी। सुनाओ
0: जो जी, धन्यवाद जी कॉल करने दे लई।

दोस्तों इस गीत दे नाल ही मैनू यानी कमल शर्मा नू प्रोग्राम सौगात होने थी समेटन दी दियो इजाजत धन्नवाद फिर मिलांगे तद तक लई रब राखा। हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम सौगात ते आकाशवाणी पंजाब ते हुण तुसी सुनोगे पंजाबी मेलोडियस गीत।

0: हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा।
1: कोट पेंट तो पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा, कोट पेंट तो पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा, वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा, वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा।
0: शर्म न कर दी झूठ बोल दी लेके छापा चले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा कख रहा ना पले, पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा, पुली जुली गहने पाते विकिया पीड़ी मूड़ा, नी दस क्यों पाया सी, नी दस क्यों पाया सी।

दे तू कीता वादा, चाड़ के ले आऊं मैं थाना दे तू कीता वादा। थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा, थानेदार करवाऊगा ते तो करदा गोहा कूड़ा। वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा, वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा।

हासे पाने भी तू एवें मुँह कर लेना मोटा, लड़न मरन ते उतरे आउना जो पुत्तरिया छोटा, लड़न मरन ते उतरे आउना।

0: प्यार तेरे नाल गूड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा
1: नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा
0: वे मैं कद पाया सी।

समस्त धार्मिक ग्रंथानुसार सृष्टि नूं साजण वाला अकाल पुरख सर्वोच्च शक्ति अते सर्वोच्च हस्ती है, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। वड्डे वड्डे ऋषि मुनि देवते भी उसका अंत नहीं पा सके। उसदियां वड्याइयां वड्डियां ने, उसकी कथा अकथ है, उसका जस गायन ही नहीं किया जा सकता। उसकी महिमा बयान तो परे है। मनुख अल्पमत्ता धारणी है, वो असीम प्रभु दे विस्तार नूं

की बयान कर सकता है। प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी बिलावल राग विच उचारे शब्द विच उस वड्डे सुल्तान दी उपमा करन दी असमर्था जाहिर करदे ने। कहे प्रभु, तेरी उपमा करके मैं तेरी कोई सिफत नहीं कर रहा। इता इंज है कि जिवें तू बादशाह है ते मैं तैनू मियाँ आख रहा हाँ। ए वी मेरी समर्था विच नहीं है। हे प्रभु, जिन्ना को तू बल दिन्ना है मैं उससे सोजी नाल तेरे गुण गाउण दी कोशिश कर लैना हाँ। मेरे पासों मूरख कोलों तेरे गुण बयान नहीं हो सकते। हे प्रभु, तू आप ही मैनू सोजी दे कि मैं तेरी सिफत सलाह दी बरकत सदका तेरी रजा विच टिक सकां। ये जो कुछ वापरिया है सब तेरी माया है, तेरी ही दयानतदारी है। हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन हाँ, तेरा अंत नहीं जान सकिया। तेरी की सिफत आखां उते अकथ है, मैनू सोजी नहीं है। तेरा स्वरूप बयान तो परे है, जितनी तू बुद्धि दित्ती है उन्नी ही मैं उस्तत कर सकिया हाँ। तेरा दास भक्ति तो सखना है, फिर भी प्रभु तू मेरा खसम है। तू ही शरण आए दी सहायता कर सकता है। तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहण ना जाई। इस शब्द का गायन किया बीबी जसपिंदर नरूला ते उन्हां दे साथियां ने।

0: तू सुल्तान कहाँ हो मिया, तेरी कवन बड़ाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन ना जाई। इस शब्द का गायन किया सी बीबी जसपिंदर नरूला ते उन्होंने रागी जत्थे ने। अकाल पुरख सबना कला समर्थ है, सर्ब सुखां दा दाता है, जो उसनू सेवदे हन उन्होंने लई ओही आसरा है। ए ज्ञान सच्चा गुरु जे अरदास सुन के कृपा करदा है, ता ही इस मस्त कारज रास हुंदे ने। पैरो राग विचले शब्द विच पंचम गुरु फरमाउंदे ने कि जिन्हां ने समर्थ प्रभु नू मन अंतर विच त्याया है, उन्हां दे सबे पै दूर हो जांदे हन। उसका अटल हुक्म सारी सृष्टि उपर आयत है, ते सब कुछ उसकी रजा अनुसार हो रहा है। परमेश्वर उपमा रहत है, ते सच्चा गुरु उसे दा ही रूप है, जिसने इस ब्रह्म ज्ञान नू माणिया है। उना दे अंदर ही प्रभु दा वासा है, ऐसे रोशन हिरदिया विच ही पार ब्रह्म दा वासा हुंदा है। ऐसे गुरदेव नू सदा नमन है, उस तो सदा बलिहारे ते उस दे चरण शरण दी लोचा रखदे हुए नाम जल ग्रहण करके जीना ही सदीवी जीवन है। सुनदिया एडवोकेट किरपाल सिंह होरा पासों वार्ता, सब ते वड समर्थ गुरदेव।
1: ए पावन पंक्ति पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी दे पुंज वड पर उपकारी सिख धर्म दे पहले शहीद बाणी के बोहित पंजवें गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारण कीती पावन बाणी दे राग भैरों विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1152 विखे सुशोभित है। इस संसार विच मनुख हर वेले किसी न किसी समर्थ का आसरा लभदा रहिंदा है। कोई ताकतवर अधिकारी नूं समर्थ मंनदा है, कोई किसी धनवान नूं, कोई किसी राजनीतिक नेता नूं, अते कोई अपने संबंधी जां विशेष मित्र का आसरा तकदा है। पर गुरु साहब की उक्त बाणी सानू साफ अते स्पष्ट दसदी है कि असल समर्थ तां गुरदेव ही पिता परमात्मा हन, क्योंकि अगलियां पंक्तियां इस गल नूं होर स्पष्ट करदियां हन, जिवें कि सब ते वड समर्थ गुरदेव, सब सुख पाई।

नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत। पेश कर रहे हां सुफियाना कलाम। कहिंदे ने रुकिया पाणी ते जिंदगी छप्पड़ बन जांदी है, चलदी हवा निर्मल हुंदी है, बहुती तेज हवा ते जिंदगी दे नाल झक्खड़ आउंदा है। हौली तुरन वाले थकदे ने पर कदे अकदे नहीं, अपनी मंजिल ते पहुँच के ही रुकते ने। इस तरह जिहड़ा व्यक्ति उस अल्लाह सोने दे नाल प्रेम पा लैंदा है, वह अपनी मंजिल नूं हासिल कर लैंदा है। आओ प्रोग्राम दा आगाज करदे हां उस्ताद बरकत सिद्धू दे गाए इस सुफियाना कलाम दे नाल। औखी घाटी बिखड़ा पैंडा राह फकीर।

तंजे करे प्यार, धर्मी धर्म करेगा वो करेगा वावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत ना जाने।

बर्थडे। सवैये महल्ले पंजवे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद तारं, गुर अर्जन गुण सहज विचारं, गुर रामदास कार कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजात बखाण्यो, भगत जोग कौ जैतवार, हर जन को उपाया, शब्द गुरु पर काश्यो, हर हृदय बसायो, गुर नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पाया, गुर अर्जन कर गुर रामदास, भगत उत्तर आया, बड भागी उन मानिया, रिद शब्द बसाया, मन मानक संतोखिया, गुर नाम

सात गोर संग लीना गोर अर्जुन कार गोर रामदास अपरंपर बीना गोर अर्जुन कार गोर रामदास अपरंपर

खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखानेओ गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभो उद्वेओ पुरख पूर्ण विदातो

0: कहयो ताते अंगद पयो तत शो तत मिलायो अंगद कृपा तार हमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत्र गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस के मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उर आद पुरख पर तख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगे तेज भुव मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो।

0: काल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदाहरण बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानो पहत है समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुर पै बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जंपै असुर गेते भाग पापिन पीतर कंपै काटे सो पापिन नरों के गुरराम दा जिन पायो शतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन कौ दे आयो।
2: अजय गंग जल अटल सिख संग सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो।
3: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समा

0: Nu pe pule, s-o te dara se oprite lăg. E câtă mă pântă sune o gură sângăt, te veme lânt jam tras mitai. E căr das pat kirat ki, gură ram das rakho sarnai. एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई
1: सो कहो टल गुरु सेविया अहनस सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसां कुरसां तद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोही है सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डबता कर कृपा पाखण हम तारी राव जन्म जन्म के लागे देख मोर्चा

पौड़ी सतगुरु बिठो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिनकार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बंजारिया सतगुरु है बोहिथा विरला के न विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार।

0: धरतरा जू तोलियन में सुगोरा होय अपराधी दुलान में जो हंता मृगा है इस नोए क्या थी है जार देश दे जा।
1: महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबगल समाधन मुख झूठ बेभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग
0: गल माला तितल लाटंग जे धोती वस्त्र कपाटंग जे जान सब ब्रह्मं करमं सोक्त निश्चो करमं कहो नानक नह चो त्यावे विण सतगुरु वाट न पावे।

0: पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही किता पावना हुक्म के मन पाम दे रहे पीड़ा गया जावना नंगा दो जग चालिया ता दिशा खरा डरावना कारोगण पछोतावना करोगण पछोतावना
1: हराम कली महला तीजा।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती स्मर कै गुरु नानक लंते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदया वैताय। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आर्यां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नाहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही। दिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा